0: back on what he described as Zimagi Naxals, referring to his Independence Day remarks. He also said that the naysayers, a homeopathic dose, that's what's needed, by calling them out and claimed that their actions and narratives were now being exposed. Prime Minister highlighted India's 7.8% GDP growth in the first quarter, saying that the figure has boosted confidence despite global uncertainty and even trade barriers. Well, he also pointed out to strong consumer demand and activity across sectors including steel, infrastructure, construction, housing and even arguing that India's growth is creating new opportunities as well as jobs.
1: अभी 15 अगस्त का मेरा भाषण आपने सुना होगा। ऐसे लोगों के लिए मैंने लाल किले से एक होम्योपैथी का डोज दिया था। होम्योपैथी की गोली, छोटी सी गोली दी थी लाल किले से। और आप जानते हैं, होम्योपैथी के कहते हैं कि स्वभाव ऐसा है कि होम्योपैथी की दवाई जब शुरू करते हैं तो शुरू के दौर में बीमारी एकदम से ज़्यादा बढ़ जाती है। ये होम्योपैथी का स्वभाव है। तो मैंने लाल किले से एक होम्योपैथी की गोली दी थी, दिमागी नक्सल। ये दिमागी नक्सल होम्योपैथी का इलाज, जैसा मैंने कहा, बीमारी को कुछ समय के लिए और उभार देता है और उसके बाद उसका इलाज शुरू करता है। इसी तरह जैसे ही मैंने दिमागी नक्सल वाली होम्योपैथी की गोली दी, सारे दिमागी नक्सल निकल निकल के बाहर आने लगे और जो इस बीमारी को बढ़ावा दे रहे हैं, अब जनता उनका भी असली रंग देख रही है। जो दुनिया तब भारत में पॉलिसी पैरालिसिस से चिंतित थी, वो दुनिया आज भारत के पॉलिसी डायनामिज्म की चर्चा कर रही है। तब दुनिया भारत को फ्रजाइल फाइव बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनने ते हुए देख रही है। अभी हफ्ते भर में ही भारत की इकोनॉमी को लेकर कई सारी पॉजिटिव खबरें आई है। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है। और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है। और साथियों, ये 7.8% की ग्रोथ भी ऐसे समय में आई है जब वेस्ट एशिया का युद्ध चल रहा है, जब ट्रेड से जुड़ी कई तरह की अड़चनें रही हैं। उस समय ऐसी ग्रोथ हासिल करना, ये अपने आप में भारत के सामर्थ्य को दिखाता है। साथियों, मैं जानता हूं, आप भी जानते हैं, जो लोग भारत को फ्रेजाइल फाइव में धकेलने के लिए बदनाम रहे हैं, उनको ये आंकड़े हजम नहीं हो रहे। लेकिन आप सभी आंकड़ों को गंभीरता से समझते हैं। आपको दो तरह के लोग मिलेंगे। एक वो लोग जो पॉजिटिव तरीके से समाज की शक्ति को राष्ट्र की शक्ति में बदलते हैं। दूसरी प्रजाति

इसके लिए बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं, क्योंकि पहले दिन से एनडीटीवी इस रास्ते पे हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
3: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
4: वाओ मामा, क्या स्वाद है!
5: अरे मेरे राजा।

बहुत मैं इसके लिए बधाई और साधुवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि पहले दिन से NDTV इस रास्ते पे हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रिकमेंड करता हूं? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
3: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये ही तो है इसकी खास बात।
4: वाओ मामा, क्या स्वाद है!
5: अरे मेरी राजा।

इसके लिए बधाई और साधुवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि पहले दिन से एनडीटीवी इस रास्ते पे हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ा।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
0: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रिकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है!
2: अरे मेरे राजा।

0: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूं? 17 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, लार्जेस्ट डेटाबेस ऑफ एलीट प्रोफाइल्स और 100% कॉन्फिडेंशियलिटी. एलीट मैट्रिमनी, इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल मैच मेकिंग सर्विस. मोदो एलीट.
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात.
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है.
1: अरे मेरे राजा.
3: सबका राजा आर्टियोर मसाला.
4: He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else. Only on NDTV Network. 3 decades of watching the world change. Of asking the questions that couldn't wait. Of telling the stories that couldn't be ignored. Of holding the line when it mattered most. Times change, our purpose doesn't. NDTV 24/7 is now NDTV, when it really matters.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यह तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे अक्रॉस द कंट्री ही हैज ट्रैक्ड द पल्स ऑफ पावर फ्रॉम वॉशिंगटन टू कोरिया विटनेस्ड हिस्ट्री बीइंग मेड इन ग्लोबल कैपिटल्स एंड कॉन्फ्लिक्ट ज़ोन्स brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else. Only on NDTV Network. Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani, aur pure vermicelli, swadisht, sehatmand, har roz. 3 decades of watching the world change. Of asking the questions that couldn't wait. Of telling the stories that couldn't be ignored. Of holding the line when it mattered most. Times change, our purpose doesn't. NDTV 24/7 is now NDTV, when it really matters.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: कि मैं चाहूँगी कि इस तरह की स्कीम जब हमारी सरकार आए तो हमारे यहाँ पर भी आरएसएस सक्रिय तो है, लेकिन आप सोच सकते हैं कि क्या प्रयास और कितने सारे स्कूल जो है आरएसएस जो चला रहा है, और जब भी देश पे कोई विपत्ति आती है, आपत्ति आती है, तो आरएसएस सबसे आगे रहता है और हमें जो है आरएसएस पे गर्व है। और टीएमसी जो है वो देश विरोधी पार्टी है, ये सब जानते हैं। टीएमसी ने जो है देश के टुकड़े करने के भी बहुत प्रयास किए, तो जो देश से ही जिनको इतनी नफरत हो और देश के लिए इतने षड्यंत्र के वो हिस्सा रहे हों, उनसे और क्या उम्मीद हो सकती है। लेकिन मुझे लगता है ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और हमारे हिमाचल में भी होना चाहिए।
1: Switching tracks now, the BHP has laid down new guidelines for Garba and Dandiya events in the state of Maharashtra, including restrictions when it comes to Muslim participation and calls for identity checks. BHP's Vinod Bansal says that Durga Puja, Ganesh Chaturthi and other religious celebrations are events of faith, arguing that devotees should be able to participate without disruption. He claimed incidents involving individuals who came to create a ruckus had prompted calls for a stricter entry measure. Now, it is BJP leader Navneet Rana who has defended the Tilak requirements, saying everyone is welcome to join the celebration but must first follow the festival's tradition. TMC MP has also gone ahead and criticized the guidelines, calling them a very bad statement, saying that there should be no objection to Muslims participating in Garba celebrations.
2: देखिए, ये धार्मिक आयोजन है, चाहे दुर्गा पूजा हो, गणेश चतुर्थी हो या अन्य कोई आयोजन, जो भक्ति भाव से आते हैं, जो श्रद्धा भाव से आते हैं, जो माता में आस्था और विश्वास रखते हैं, वही आते हैं, उन्हीं को आना चाहिए। हाँ, ये कि पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से कुछ घटनाएं सामने आई कि माता के गरबा के जो कार्यक्रम हैं उसमें कुछ जिहादी तत्व, कुछ समाज कंटक तत्व, कुछ अनास्थावान लोग वहाँ आकर के उपद्रव मचाते हैं, बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं या कुछ और अभद्रता करते हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए समाज ने तय किया कि भाई जो आस्था के आयोजन हैं उन्हें आस्थावान लोग ही प्रवेश करें। हमारा विरोध सिर्फ उन लोगों से है जो कि श्रद्धा के उस महाआयोजन में खलल डालने की कोशिश करते हैं।
3: बहुत ही खराब वार्ता है। कोई मुसलमान अगर गुजरातियों का गरबा में अंश ग्रहण करते हैं, इसमें रुकावट नहीं डालना चाहिए। ये जो कर रहे हैं खराब कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद अभी पश्चिम बंगाल में हुकूमत में आने के बाद काफ़ी जगह में हस्तक्षेप कर रहा है, ये अच्छा नहीं है। ये पश्चिम बंगाल के स्थिति को, माहौल को खराब करेगा।
4: मैं आपको इतना ही बता सकती हूँ कि अगर किसी को भी हमारे फेस्टिवल में आना है, हमारे संस्कृति बहुत पसंद आती है, नवरात्र पसंद आता है, गणपति पसंद आती है, दुर्गा देवी पसंद आती है, गरबा पसंद आता है, तो मुझे लगता है हर किसी का स्वागत। हमारी तो संस्कृति, हमारा धर्म यही सिखाता है, कोई भी आता है उसका स्वागत करो, पर मेरी एक शर्त है, माथे पे तिलक लगाओ और आके हमारे साथ गरबा खेलो।
5: मुझे लगता है कि अभी विश्व हिंदू परिषद की अपनी भूमिका है, लेकिन जिस तरह अपने भारत का संविधान है, हमारे हिंदू समाज के लोग अनेक दरगे पर जाते हैं, जिस तरह अजमेर का दरगाह है, वह मुसलमान से ज़्यादा हिंदू लोगों की भीड़ ज़्यादा होती है, तो बाबा साहब के संविधान ने भाईचारा बंधुभाव बढ़ाने का भूमिका रखा है संविधान में। तो मुझे लगता है कि अगर कोई मुस्लिम अगर मतलब गरबा में आता है तो उनको दोषी ठहराना बिल्कुल ठीक नहीं है। अनेक लोग मतलब एक दूसरे के त्यौहार में जाते हैं और ऐसी टिप्पणी करना बिल्कुल ठीक नहीं है।
6: इस देश के स्वतंत्रता संग्राम में, इस देश के सांस्कृतिक संग्राम में मुसलमानों का भी बड़ा योगदान रहा है। आपके मोहनराव भागवत जी आदरणीय सरसंघ चालक विदेश में जाते हैं, न्यूयॉर्क में जाते हैं, लंदन में जाते हैं और ये भाषण देते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में मुसलमान और हिंदू में कोई मतभेद नहीं होने चाहिए, चाहे राजनीतिक हो, चाहे सांस्कृतिक हो, चाहे धार्मिक हो, हम एक साथ रहेंगे, एक साथ काम करेंगे। और यहाँ उनके जो पिते हैं

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।

आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else. Only on NDTV Network. Meetha. या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज

0: Launch control, 0 to 100.
1: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move.
2: This car makes no sense, yet it makes every sense.
1: What we are sitting inside is a Joby-powered air taxi. Your friend said, yeah, Lily. We said, maybe not. Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
3: The front lines of Kargil. The fury of Operation Sindhu.
4: So many attacks.
3: The chaos and cries of disaster zones. To fighter jet cockpits. And the world's most defining interviews.
4: It's incredible.
3: He has seen history break. Live, unfiltered. 20,000 hours of live broadcasting.
4: Welcome to Left, Right, and Center.
3: Hard facts.
4: War struck country.
3: Hard questions.
4: In the Ukraine.
3: 30 years of trust.
1: In the Kargil area.
4: North Ukraine.
1: In France. In Italy.
4: At Srinagar.
1: I am Mr.
4: Vishnu Shom for NDTV.
3: Vishnu Shom.
5: If a boy from Ahmedabad could build what stands here today, then there must be 1,000 more Gautam Adanis simply waiting for someone to notice them.
6: इसी सोच के साथ संघर्ष की खदानों में छिपे देश के हीरों को तराशने के लिए श्री गौतम अदानी ने शुरू किया देश का सबसे बड़ा ग्रास रूट्स इनोवेशन मूवमेंट वंदे भारतम। एक ही महीने से कम समय में देश भर से जुड़े लाखों लोग, हजारों सपने, टॉप मेंटर्स, कई शीर्ष नेतृत्व, बदलने देश के स्टार्टअप का सीन, करने करोड़ों का निवेश, आइडियाज को साल भर वेलकम करने के लक्ष्य के साथ। तो मंच है शानदार, करोड़ों की प्राइज मनी का हो रहा है ऐलान, स्पेशल कैटेगरी पर भी है खास ध्यान। और बात सिर्फ पुरस्कारों तक सीमित नहीं है, क्योंकि हो सकता है मेंटर्स को किसी इनोवेशन या बिजनेस आइडिया में पोटेंशियल नजर आता है तो वे शुभारंभ के लिफाफे के साथ कर सकते हैं उसमें इन्वेस्ट। या ये भी हो सकता है कि किसी इनोवेटर की कहानी और उनका स्ट्रगल किसी मेंटर को इंस्पायर कर दे तो वे उन्हें दे सकते हैं वंदे विंग्स, जिसमें उन्हें मिलेगी अदानी ग्रुप के साथ 10 दिनों की मेंटरशिप। और अगर आपका आइडिया नहीं बन सका हमारा भागीदार तो निराश न होना, बस रजिस्ट्रेशन करो, पाओ निवेश में मदद, मेंटरशिप या अदानी ग्रुप का सहकार। और हाँ, ऑडियंस भी हमारे पोर्टल पर जाकर इनोवेटर्स को वोट कर सकती है, और यदि आपका टॉप 5 का सिलेक्शन मेंटर्स के सिलेक्शन से मैच होता है तो 3 लकी विनर्स को मिलेगा स्पेशल प्राइज। तो अब क्यूरियोसिटी कम करते हैं और इनोवेशन की ओर आगे बढ़ते हैं।

0: वेलकम टू वंदे भारतम, एन इनिशिएटिव बाय गौतम अदानी। मैं हूं राजीव खंडेलवाल और एक बार फिर आपको ले चलता हूं भारत की नई सोच यानी वंदे भारतम के मंच की तरफ। एक बार फिर मैं आपको मिलवाता हूं हमारे आज के मेंटोर से। 20 वेलकम अंकुर धैया, विजय केडिया और अब डॉक्टर अपूर्व रंजन शर्मा एंड प्लीज वेलकम मिस्टर प्रणव अदानी। तैयार हो जाइए भारत के उन इनोवेटर्स से मिलने के लिए जो सिर्फ सपने नहीं देख रहे, उन्हें हकीकत में बदल रहे हैं। मेंटोर्स, हमारे जो पहले इनोवेटर्स यहाँ पर आ रहे हैं, प्लीज वेलकम चंदौली उत्तर प्रदेश से हम्बल बी की इनोवेटर मोनिका शुक्ला। वंदे भारत में आपका स्वागत है।
1: थैंक यू सो मच
0: जी। कैसी हैं आप?
1: बहुत बढ़िया, बहुत थोड़ी सी नर्वस, बहुत ज्यादा एक्साइटेड।
0: नर्वस नहीं होना चाहिए आपको इस मंच पर। मैं चाहता हूँ कि कोई भी बिल्कुल नर्वस ना हो, बिकॉज यहाँ पर सब आपकी सहायता करने के लिए हैं।
1: बिल्कुल,
0: डू नॉट बी नर्वस एट ऑल। आपकी पिच तैयार है?
1: यस।
0: यू कैन स्टार्ट विद द पिच। आपके

0: पास में 3 मिनट है और आपके चमकने का समय शुरू होता है अब।
1: नमस्ते। जब हमारे देश में अन्न का अभाव था तो ग्रीन रेवोल्यूशन ने हमें फूड सफिशिएंट बनाया। जब देश में मिल्क की कमी थी तो व्हाइट रेवोल्यूशन ने ना केवल इंडिया को वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर बनाया बल्कि सस्टेनेबल रूरल लाइवलीहुड्स की एक लहर भी छेड़ी। अब समय है एक नए रेवोल्यूशन का, एक गोल्डन रेवोल्यूशन का, जो छोटी छोटी मधुमक्खियां लेकर आएंगे। मेरा नाम मोनिका शुक्ला है और मैं हम्बल बी नाम के एक सोशल एंटरप्राइज की को फाउंडर और CEO हूँ। हम सब जानते हैं कैसे देश में 80% से ज्यादा किसान स्मॉल और मार्जिनल हैं, जिनके पास 1 एकड़ से कम की जमीन है एग्रीकल्चर के लिए। अब क्लाइमेट चेंज से रिस्क काफी बढ़ गए हैं। अगर एक क्रॉप फेल होता है तो उस किसान का पूरा परिवार डिस्ट्रेस और डेट के साइकिल में चला जाता है। हमारे देश में एग्रीकल्चर में एक और प्रॉब्लम है जो कि काफी इनविजिबल है, और वो प्रॉब्लम है इनएडिक्वेट पॉलिनेशन यानी अपर्याप्त परागण की। अब आप सोच लीजिए कोई एप्पल का बागान, वहां पे केवल 15-20% फूल ही फल में कन्वर्ट होते हैं क्योंकि मधुमक्खियां कम हैं। और वहीं अगर हम ब्लूमिंग के समय साइंटिफिकली मैनेज्ड बी पॉलिनेशन की करें तो ये नंबर बढ़ के 35-40% हो जाता है। और ये सेम कहानी सरसों, लीची, कॉफी, कैशू और दर्जनों अन्य क्रॉप्स में है। इंडिया में लगभग 60 मिलियन हेक्टेयर का लैंड बी पॉलिनेशन पे डिपेंडेंट है, जिसके लिए आज हमें 200 मिलियन बी कॉलोनीज चाहिए, लेकिन हमारे पास देश में केवल 3.4 मिलियन बी कॉलोनीज हैं। हमें यहाँ से 60 गुना बढ़ना है। अगर हमारे हर एक तिलहन, दलहन, फल, सब्जी और सीड स्पाइसेस में सही समय पर बीज को इंट्रोड्यूस किया जाए जब फ्लावरिंग हो रही है तो ना केवल क्रॉप यील्ड बढ़ेंगे बल्कि जो फ्रूट्स होंगे, सीड क्वालिटी होगी, वो हेल्दियर होगी, किसान की इनकम बढ़ेगी और मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर अगले 1-2 साल में इंडिया की एग्रीकल्चरल GDP कम से कम 5-10% बढ़ सकती है। तो जिस तरह अमूल ने डेयरी फार्मर्स का वैल्यू चेन डीरिस्क किया एक एंड टू एंड इंटरवेंशन करके, ये सेम प्रक्रिया हम हम्बल बी के जरिए कर रहे हैं। हम प्रिसिशन इंजीनियर्ड बी हाइव्स बनाते हैं। वाराणसी में हमारी फैक्ट्री है जहाँ पे 90 से ज्यादा लोग आज एम्प्लॉयड हैं। और इन बी हाइव्स में ना केवल बीज हेल्दियर रहती है बल्कि हनी की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों इम्प्रूव होती है। हम महिलाओं को ट्रेन करते हैं कि वो सशक्त बी कीपर्स बन सके। हम उन्हें लो कॉस्ट अफोर्डेबल क्रेडिट मुहैया कराते हैं ताकि वो ओन कर सके इन बी हाइव्स को एज एसेट्स, एग्जैक्टली जो अमूल का मॉडल है। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वेदर इंटेलिजेंस यूज करके ये डिटरमिन करते हैं कि कौन से हाइव सेट को कब किस फ्लावर्स में लेकर के जाना है ताकि मैक्सिमम पॉलिनेशन हो सके। और जिन जिन जगह हम जाते हैं ये बीज उस पर्टिकुलर क्रॉप के फ्लावर पे फीड करती है, उसका नेक्टर लेकर के आती है और एक बहुत ही यूनिक हनी बनाती है विच इज डिफरेंट इन कलर, फ्लेवर, अरोमा, टेक्स्चर एंड इवन वेलनेस बेनिफिट्स। जब हनी पक जाता है हाइव में उस समय हमारी टीम जाकर के जियोटैग टाइम स्टैम्प मैनर में कंप्लीट ट्रेसेबिलिटी के साथ एथिकली क्रुएल्टी फ्री तरीके से हार्वेस्टिंग करती है और महिलाओं के इनकम को डीरिस्क करने के लिए हम फेयर फॉरवर्ड बायबैक अश्योरेंस देते हैं। हमने इसे एक महिला फर्स्ट मूवमेंट बनाया है 2 कारणों से। पहला, जब महिलाओं के हाथ में प्रोडक्टिव एसेट आता है तो ना केवल उनका परिवार बल्कि उनका पूरा समुदाय लाभान्वित होता है। हमारा उद्देश्य ये है कि 2030 तक हम 10 लाख महिलाओं को सशक्त मधुमक्खी पालक बना दें। देश के हर एक गाँव में हम 10-15 बी कीपर्स बनाएं ताकि हमारी इकोनॉमी में 65 लाख से 1 करोड़ लोगों को क्लाइमेट रेजिलिएंट लाइवलीहुड का एक्सेस हो। इमेजिन करिए एक इंडिया जहाँ पर हर फूल फल बनता है, जहाँ पर किसान ऑर्गेनिक और रीजनरेटिव फार्मिंग करता है ताकि बीज का कंजर्वेशन हो सके, जहाँ पे एक किसान केवल अपने क्रॉप के फेलियर और सक्सेस से अपना फेट डिसाइड नहीं करता है, और जहाँ पे मधुमक्खियाँ सिर्फ शहद नहीं बनाती है बल्कि ओवरऑल समृद्धि लेकर के आती है। एक विकसित भारत की हमारी यही परिकल्पना है और यही है हम्बल बी का गोल्डन रेवोल्यूशन। धन्यवाद।
0: आप एक्सपेक्ट क्या कर रही हैं मेंटोर?
1: अगले क्वार्टर में हम प्रयास कर रहे हैं कि 40 करोड़ का एक राउंड रेज करें जो कि हम ओपन करने वाले हैं। इफ यू वुड वांट टू जॉइन द राउंड और लीड द राउंड, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हैव अ कन्वर्सेशन।
2: मोनिका, प्रोडक्शन आई अंडरस्टूड, हैव वी स्टार्टेड इंटीग्रेटिंग इट विद मार्केट्स? रियली लव टू अंडरस्टैंड हाउ आर वी प्लानिंग।
1: तो अभी हमारा जो मैक्सिमम फोकस और जो रेवेन्यू भी आ रहा है वो बी हाइव मैन्युफैक्चरिंग और इनपुट सप्लाई से आ रहा है। इस साल हमारी अपेक्षा है कि वी विल गेट अ ह्यूज फ्लश ऑफ हनी. वी हैव बीन गेटिंग हनी फ्रॉम डिफरेंट जोन्स. वी आर डूइंग सीरियस हनी बिजनेस नाउ नाउ दैट यू नो वी हैव थाउजेंड्स ऑफ बी कीपर्स एनेबल्ड. सो इसीलिए अब फॉरवर्ड मार्केट लिंकेज करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया है.
3: आपका जैसे हम लोग ये पढ़ते हैं वैसे

0: है और अजवाइन हनी में थाइमोल है, उसके उसके बगैर अगर मैं भेजूं तो वो अनडिफरेंशिएटेड मार्केट में रेगुलर हनी के साथ में जाएगा। तो अगर मुझे वो प्राइस डिफरेंशिएटर कमांड करना है तो मुझे R&D में इन्वेस्ट करना होगा।
1: यू सेड यू आर रेजिंग 40 करोड़, यू हैव रेज्ड द मनी इन द पास्ट?
0: नो।
1: सो व्हाट इज योर करंट बिजनेस स्टेटस?
0: सो दिस इज आवर थर्ड ईयर ऑफ ऑपरेशंस। पिछले साल 5.9 करोड़ का टर्नओवर था हमारा, जिसपे हमारा लगभग 12% नेट मार्जिन था। अभी जो हमारा ऑर्डर बुक है उसके अनुसार हमारा टर्नओवर एंटिसिपेटेड 22 से 25 करोड़ है इस फाइनेंशियल ईयर में।
1: How much money you actually need to create a 500 crore revenue business?
0: Maybe 150 crores चाहिए होगा।
1: 150 crore चाहिए होगा। कितना dilute करोगी?
0: मैं convertible करना चाहूँगी sir, not more than 15% dilution.
1: See, we'll be interested. This space we are studying from long. We've been invested in a small company in Uttarakhand in the same space.
0: जी.
1: We know this revolution is waiting to come. I can give you an offer.
0: Understood.
1: Looking at the stage of your business, we can go up to 5 crore investing.
0: Thank you so much.
2: And Monica, if we can help in anything, hum log 45,000 gaon mein kaam karte hain. There are a lot of people on field would love to help in whatever manner you seem is useful to you.
0: Thank you so much for saying that.
3: I must say that you are one very well informed about the industry that you are in. We at the Adani Group have a lot of investments in Himachal. In fact, we are one of the largest buyers and sellers of branded apples, similar to what Washington Apples or, you know, what comes in from the cooperatives internationally. I think we'll be very happy to look at how we can help Humble Bee to tie up with the farm. See, at the end of the day, as I understand it, Humble Bee is not selling honey. It is selling a purpose, it is selling a story, it is selling India. So I think even if you are interested to sell in from any of our airports, we'll be happy to look at that, because people visiting the airports will appreciate when you actually talk about a story, because aajkal kafi brands hai which is actually, you know, selling you memories of your childhood through food. Or in this case, you know, you're selling a whole purpose-based product. Honey is one of them, but it's eventually purpose-based. So I think we'll be happy to look at that. And if all my judges agree, we'll be happy to even mentor.
4: This is not ending for you, Monica. बहुत कम ऐसा होता है कि सारे के सारे mentors अपना interest दिखाते हैं, Monica. There comes the check. This शुभारंभ हो गया आपका. Not just the investment part. I think Pranav आपको बंदे wings भी देना चाहते हैं. Many many congratulations.
0: Thank you so much. Thank you so much, sir.
4: Mentors, course. आगे बढ़ने से पहले थैंक यू सो मच प्रणव हमारे साथ में जुड़ने के लिए। मैं जानता हूँ आपके पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉल आया है, आपको जाना ही पड़ेगा, बट अपना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स अ लॉट। तो एक मिंटोर गेस्ट गए और एक और मिंटोर गेस्ट यहाँ पर आ रहे हैं। इनका विजन है टू क्रिएट टॉप 10 ग्लोबल बिजनेस स्कूल्स फ्रॉम इंडिया। Is nurturing India's next generation of entrepreneurs. Please welcome Masters Union or Theatre College ke founder, hamare education industry ke mentor, Mr. Pratham Mittal.

0: मेंटर्स, हमारे जो अगले इनोवेटर यहाँ पर आने वाले हैं वो एक किसान के बेटे हैं और उन्होंने अपने पिता और पिता जैसे अन्य लोगों की तरक्की के रास्ते से पत्थर हटा रहे थे लिटरली। प्लीज वेलकम संगा रेड्डी तेलंगाना से होम्या इनोवेशन के इनोवेटर दीपक रेड्डी एंड अमरेश जना। हाय दीपक, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया बढ़िया।
0: आप जानते हैं हमारा ये जो वंदे भारतम का प्लेटफॉर्म है ये बिगेस्ट ग्रास रूट इनोवेशन मूवमेंट है और आपका जो इनोवेशन है वो बहुत ग्रास रूट से जुड़ा हुआ है जिससे ना तो सिर्फ आपके पिता को फायदा हुआ बल्कि कितने किसानों को फायदा होगा। जर्नी कैसे रही आपकी?
1: सर, जर्नी तो बहुत हार्ड था सर। मेरा स्कूलिंग सब कुछ यहाँ मेरा गाँव में ही हुआ था तो और इसके बाद मेरा हायर एजुकेशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग हैदराबाद से JNTU यूनिवर्सिटी से किया हूँ और उसके बाद मेरा जॉब लगा एक MNC सॉफ्टवेयर कंपनी में पुणे में और जॉब करके मैं एक बार ऐसे ही हॉलीडेज में गांव आया। मैं ये नोटिस किया कि थोड़ा सा मेरा एग्रीकल्चर लैंड बैरन पड़ा हुआ है तो जब मैं मेरा फादर से ये पूछा कि हमारा ये लैंड क्यों कल्टिवेट नहीं हो रहा है तो मेरा फादर ने ये

0: लगता है कि पत्थर के वजह से हम एग्रीकल्चर का काम इस पे नहीं कर सकते।
1: हमारे दादा परदादा उनकी जमीन थी, हम वो पत्थर रहने से हमारे दादा उन लोगों भी वो जमीन में नहीं जाते थे। वो जमीन में पत्थरों रहने से जो कपास होंदे कुछ भी होंदे वो नहीं होते थे। लोगों को लाके ये पत्थर निकालवा लगाते थे, बहुत खर्चा रहता था, इसलिए हम वो जमीन छोड़ के दूसरों पे मजदूर करने के लिए जाते थे।
0: बहुत सारा फार्मर्स ऐसा जमीन वाला है वो एग्रीकल्चर नहीं कर पा रहे, फिर वो अर्बन एरियाज में माइग्रेट हो जा रहे। तो मुझे तब ये समझ में आया कि इतना सीरियसनेस कितना है प्रॉब्लम का। बीइंग ए मैकेनिकल इंजीनियर, लोकली अवेलेबल रिसोर्सेस है, तो उसी के साथ मैंने एक छोटा सा प्रोटोटाइप ने बिल्ड कर दिया। तो ये प्रोटोटाइप मेरे को बिल्ड करने में 3 मंथ्स लग गया तक। तो ट्रैक्टर के साथ हमने जब लैब में इसको टेस्ट किया तो बस हमारा वो प्रोटोटाइप एक आधा घंटा चलने से उसका मतलब पूरा ब्रेकडाउन हो गया कि हम उसको फील्ड तक भी नहीं ले पाए। जैसा हर प्रोटोटाइप बनते थे फिर फील्ड पे ट्रायल पे लेके जाते थे। तो ये पत्थर तो ऐसे चीज़ है कि कुछ स्टैंडर्ड नहीं है, इसका शेप स्टैंडर्ड नहीं है, स्ट्रेंथ स्टैंडर्ड नहीं है, हर एक लोकेशन पे अलग अलग पत्थर मिलता है आपको। तो हर प्रोटोटाइप में कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स आता था, तो हर डिफेक्ट्स को फिर इटरेशन करके फिर उसको चैलेंजेस सॉल्व करके फिर फील्ड पे ट्रायल पे जाओ, मतलब ये बहुत ही चैलेंजिंग था सिचुएशन। बहुत लोग ऐसा भी मजाक उड़ाते थे आप स्क्रैप भी करने के लिए प्रोडक्ट बनाए।
2: किसी को लेकिन पता नहीं था कि आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं और आप अपनी इंजीनियरिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं कुछ डेवलप करने के लिए जो कि मेक इन इंडिया है।
0: एक बार मेरा गांव को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आया था, तो जब ने मैं ये डिमॉन्स्ट्रेशन किया डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के सामने, वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने समझा कि ये चीज़ गांव के लिए या डिस्ट्रिक्ट के लिए कितने इम्पोर्टेंस है, तो वो मुझे अप्रिशिएट किया। तब जाके मेरा फैमिली लोग और मेरा फादर भी बहुत खुश हो गया कि ये कुछ इम्पैक्टफुल या कुछ मीनिंगफुल कर रहा है। July 31st को मुझे हाईएस्ट लेवल ऑफ रिकॉग्निशन मिला, मुझे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से इनविटेशन आया कि बेस्ट ग्रास रूट इनोवेटर अवार्ड। तो ये अपना इंडिया के अंदर 26 लोगों को ये सेलेक्ट किया, मुझे बहुत खुशी है कि 26 में वन ऑफ मई हूँ।
2: व्हाट एन इनोवेशन, बहुत प्राउड महसूस कर रहा हूँ मैं क्योंकि आप यहाँ पर आए हैं, आपको प्रेसिडेंट से अवार्ड मिला। आप जानते हैं इस मंच पर भी ना एक ऐसे मेंटोर बैठे हैं जिन्हें प्रेसिडेंट से अवार्ड मिला था।
3: It was the best incubator award.
2: Best incubator award
3: given by the on the technology day by the president.
2: मेरी रिसर्च बिल्कुल सही है आपके बारे में। So I'm sure आज आपके लिए आपके दिल में एक थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर होगा इनके लिए। Looking at his innovation, आप इन पिच के साथ में रेडी हैं?
3: Yes sir.
2: जो मेंटोर्स बैठे हैं वो इंतजार कर रहे हैं आपके पिच सुनने के लिए। आपके चमकने का समय शुरू होता है अब।
4: मेंटर्स नमस्कार, मैं हूँ दीपक कोंगरी, फाउंडर एंड सीईओ बॉम्बे इनोवेशन।
5: Myself Amresh Jana, I am the co-founder of the company. I look after marketing and sales.
4: मैं यहाँ आज भारत का लाखों किसानों का आवाज बन के आया हूँ जो हर साल फसल उगने से पहले पत्थरों से लड़े। और मेंटर्स, पत्थर सिर्फ एक पत्थर नहीं होता है, ये आपका ट्रैक्टर को खराब कर सकती है और आपका महंगे चीजों को डैमेज कर सकती है और बीज को उगने से रोक देती है। तो यहाँ तक ही नहीं, कई बार अपना किसानों का उम्मीद तक तोड़ सकती है और इसी कारण भारत का लाखों एकड़ सालों से निरुपयोग पड़ा हुआ है। जो ये सालों से निरुपयोग पड़ा उस जमीन को दोबारा खेती का लायक बनाने के लिए हमने बनाया रुद्रा। रुद्रा भारत की पहली पेटेंटेड और सर्टिफाइड स्टोन पिकर रूट क्रॉप हार्वेस्टर है जिसने हमें आज तक 3,500 से ज्यादा एकड़ दोबारा खेती का लायक बनाया है। और रुद्रा एक आइडिया या प्रोटोटाइप नहीं है, ये पेटेंट से प्रोटेक्टेड और IIT खड़गपुर टेस्टेड सर्टिफाइड और भारत सरकार का सब्सिडी स्कीम लिस्टेड एक प्रॉपर प्रोडक्ट है। रुद्रा एक भारत का बंजर जमीन को दोबारा खेती का लायक बनाने के लिए एक बड़ा मिशन है। हर रुद्रा के पीछे एक नया बिजनेस खड़ा होता है, एक रूरल एंटरप्रेन्योर पैदा होता है, हजारों को रोजगार मिलती है और लाखों किसानों का प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। हम प्रोडक्ट लॉन्च किए जब से 2.8 करोड़ का रेवेन्यू कर चुका है। हमने टारगेट रखा कि 2031 तक 50 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे। भारत के पास वक्त कम है, हर साल हम लाखों एकड़ प्रोडक्टिव बना सकते हैं और हम इसी मिशन को एक्सेलरेट करना चाहते हैं। आज हम स्टोन पिकर और रूट क्रॉप हार्वेस्टर को सॉल्व कर रहे हैं, कल जाके हम भारत का एग्रीकल्चर का फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएंगे। आप अगर आज गौम्या पे इन्वेस्ट करेंगे तो आप सिर्फ एक कंपनी पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे, आप फ्यूचर भारत का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि केवल हम मिशन नहीं बनाते, हम भारत का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाते। धन्यवाद।
2: I love this thing. That's so good.
6: अमरेश, दीपक, ये बताइए कि आज के दिन आपके गांव में इस प्रॉब्लम को, पत्थर की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा रहा था आपसे, आपके आने से पहले?
4: इससे पहले तो कम्प्लीटली मैनुअली इसको क्लियर करते थे। अगर बड़े खेत है तो मैनुअली तो इसको क्लियर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, तो इसी का कारण वो सालों से ये जमीन बंजर छोड़ देते वैसे।
3: आपका जैसा कोई और फॉरेन प्रोडक्ट नहीं है क्या?
4: तो फॉरेन का प्रोडक्ट्स है तो जो वेरी एक्सपेंसिव है, और एक चीज ये है कि जो अपना इंडियन सॉइल को शूट नहीं करते।
3: मिस्टर रेड्डी, यहाँ से आगे इसको बिजनेस के रूप में कैसे बनाना चाहते हो?
4: सर, अभी अपना इंडिया में 10.5 लाख मिलियन हेक्टर के से ज़्यादा ऐसा ज़मीन है, तो हमने बिजनेस मॉडल ऐसा प्लान किया कि हम डीलर को पकड़ेंगे, CHC बनाएंगे हर एक जगह, जो एरिया पे जिसका रिक्वायरमेंट है वो हमारा एक कॉमन प्लेटफॉर्म रहेगा, वो हमारा सारा इनोवेशन और सारा प्रोडक्ट वहाँ से किसानों के लिए यूज़ होंगे, और हमारे को पेयर से भी रेवेन्यू आता और एनुअल मेंटेनेंस से भी रेवेन्यू आता।
3: मिस्टर रेड्डी, आई हैव अ स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू। 2 साल के अंदर 200 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करने के लिए क्या कर रहे हैं?
4: सर, हमको पहले प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत बढ़ाना है, तो फिर सर्विस टीम बढ़ाना है। हमारा अभी यही दिक्कत हो रहा है कि हम एग्रेसिवली मार्केटिंग इसीलिए नहीं कर पा रहे कि डिमांड आ रहा है तो हम उसको प्रोडक्ट बना के उसको सर्विस नहीं दे।
3: क्या चाहिए उसके?
4: पैसा चाहिए।
3: कितना चाहिए?
4: सर, हमारा आस्था है 3 करोड़ चाहिए हमारा प्रोडक्शन सेटअप और सर्विस टीम को डेवलप करने।
3: 200 करोड़ के लिए कितना चाहिए?
4: 200 करोड़ के लिए हमें चाहिए मतलब एक प्रॉपर प्रोडक्शन सेटअप 50 करोड़ का डेवलप करने का जरूरत।
3: ठीक, थैंक यू।
7: और एक मशीन बनाने में कितना टाइम लगेगा आपको अगर आपका प्रोडक्शन सेटअप हो गया तो?
4: अगर हमको सारा सेटअप सब कुछ ठीक है, जितने भी मतलब फैब्रिकेशन स्टैंडर्ड ऑपरेशन हमने डेवलप किया अगर वो हम फॉलो करेंगे तो हम 1 वीक पे एक प्रोडक्ट बना सकते।
6: किसी भी एक स्टार्टअप की लाइफ में 3 पार्ट्स होते हैं, 0 to 1, 1 to 10 और 10 to 100। तो 0 to 1 तो आपने कर लिया है, आपने प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिया है, प्रोटोटाइप से अगले स्टेज पे पहुंच गए हैं, कुछ रेवेन्यू भी हमारा। अब 1 to 10 के लिए आपको कंपनी में काफ़ी चेंजेस लाने पड़ेंगे, अपने अंदर भी चेंजेस लाने पड़ेंगे। यू कैनॉट बी जस्ट एन इंजीनियर, यू हैव टू बी एन एंटरप्रेन्योर, यू हैव टू बी अ बिजनेस ओनर नाउ, राइट? तो अपने अंदर आपको क्या क्या इंप्रूवमेंट्स लानी पड़ेंगी टू इक्विप योरसेल्फ फॉर दिस 1 to 10 जर्नी?
4: मैं जब प्रोडक्ट बनाता था मेरा तो सोच यही रहता था कि हमेशा इसको प्रोडक्ट पहले बना दो। हमारे को GTM पता नहीं था, बिजनेस मॉडल पता नहीं था, मैं ये सब सीख लिया। हम तो 50 करोड़ का वो माइंडसेट पे था। सर ने बोल रहा कि 200 करोड़ आप कैसे करेंगे, वो क्वालिटीज हमको लाना पड़ेगा सर।
2: डॉक्टर अपूर्वा, आई थिंक दे नीड टाइम टू एक्चुअली प्रोसेस की व्हाट, हाउ डू वी रीच 200 क्रॉस एंड व्हाट डू वी नीड फॉर 200 क्रॉस, राइट?
4: यस यस।
3: देखो, यू हैव टू शो अस द बिजनेस डेवलपमेंट कैपेबिलिटी, मीन द एंटरप्राइज डेवलपमेंट कैपेबिलिटी। एट दिस स्टेज वी कैन डू अ स्मॉल चेक व्हिच आई वुड लाइक टू ऑफर टू यू, 1.5 crore चेक।
2: 1.5 crores फॉर हाउ मच इक्विटी?
3: 15% इक्विटी एट लीस्ट।
8: 1.5 crore मैं भी दे सकता हूँ, जैसे 1.5 ये दे रहे हैं।
2: तो 3 crore हो गए फॉर 15%।
3: लेट्स डू 2 crores, ओके, एंड फॉर 20%। That's our offer to you.
2: 2 crore for 20%.
3: This is an offer from our side.
5: Sir, can we do it like 10% equity for 2 crore?
2: Their offer is 10% equity for 2 crore.
3: 20 crore value of you.
8: Chalo, done.
2: Done. 2 crore for 10%. Congratulations. मुझे स्टार्टिंग से लग रहा था कि आप लोग कुछ आज यहाँ से लेकर जाएंगे। ऑफ कोर्स वैसे तो आप बहुत से लोगों का प्यार और बहुत कुछ वैसे ही लेकर जाते हैं, लेकिन यहाँ से आप लेकर जा रहे हैं 2 crore for 10%.
8: Congratulations.
5: Thanks a lot, sir.
3: Oh, you have done a great job. I think you are getting a mentor like Vijay Bhai and us. We have a lot of people who can help you.
5: Yes,
3: more importantly, you need good mentorship at this.
5: Yes, this is important.
2: आइडियाज में है दम तो कहो वंदे भारतम। आप लोग जानते हैं यहाँ पर खड़े रहने का सबसे बड़ा सुकून कब मिलता है, जब आप ग्रास रूट लेवल के ड्रीम्स को पूरा होते हुए देखते हैं। आई एम सो सो हैप्पी, लुक एट द ब्यूटी ऑफ इट। एक्चुअली वंदे भारतम का प्लेटफॉर्म, हमारे यहाँ का मैकेनिकल इंजीनियर अपने लिए कुछ चीज़ बनाता है विच इज़ मेक इन इंडिया, हमारे लोग उन्हें सपोर्ट करते हैं, सारा फायदा किसको होता है, हमारे देश को होता है। आई थिंक दैट इज वॉट वंदे भारतम इज ऑल अबाउट। थैंक यू सो मच। और आपका सफर यहाँ पे खत्म नहीं होता, क्योंकि अगर आपकी पिच टॉप 5 पिचेस में से हुई तो आप होंगे टॉप 5 विनर्स की लिस्ट में, और फिर आप यहाँ पर आएंगे फिनाले एपिसोड में, आपको मौका मिलेगा मिस्टर गौतम अदानी जी से मिलने का। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो एंड सेलिब्रेट।
0: थैंक यू सर। थैंक यू सर।
2: थैंक यू। कोर्स प्लीज। ओके, अगले इनोवेटर को यहाँ पे बुलाते हैं। प्लीज वेलकम फरीदाबाद हरियाणा से थरक्षा इको सॉल्यूशंस के इनोवेटर अर्पित धूपर। हाय अर्पित।
9: हाय राजीव।
2: वंदे भारत में आपका स्वागत है।
9: थैंक यू सो मच।
2: आर यू रेडी विद योर पिच?
9: एब्सोल्युटली।
2: ओके, आपके चमकने का समय शुरू होता है अब।
9: हर साल इंडिया में 10 करोड़ टन एग्री वेस्ट को आग लगा दिया जाता है, पर ये सारा जलता हुआ जो मटेरियल है एक 20,000 करोड़ की मिस्ड मार्केट अपॉर्चुनिटी है। थरक्षा इको सॉल्यूशंस एक ऐसी डीप टेक बायो मटेरियल्स कंपनी है जिसमें हमने एक प्रोसेस डेवलप किया है जिससे कि हम ऐसे जलते हुए मटेरियल को कन्वर्ट कर सकते हैं एक ऐसे मटेरियल में जो कि दम रखता है हर तरीके के प्लास्टिक फोम्स और थर्माकोल को मार्केट से रिप्लेस करने का। अब इस मटेरियल का एक खासियत है कि यह थर्माकोल से बेटर परफॉर्म करता है दो फ्रंट्स पे। पहला बेटर कुशनिंग कैपेबिलिटी एंड जर्क एब्जॉर्प्शन, और दूसरा थर्मल इंसुलेशन। कोल्ड चेन एप्लीकेशन में हमने ऐसा बॉक्स बनाया जो कि थर्माकोल बॉक्स से 20% बेटर परफॉर्म करता है। मेंटर्स, आज की डेट में वी हैव क्रिएटेड 5+ कोर मटेरियल इनोवेशंस एंड सेल्फ डेवलप्ड एंड पेटेंट पेंडिंग मशीनरी दैट हैज अलाउड अस टू बिकम द चीपेस्ट एंड मोस्ट स्टेबल माइसिलियम कंपनी एनीवेयर इन द वर्ल्ड। इसको कंप्लीट करने के लिए हमें क्रैक करना होगा डिस्ट्रीब्यूटेड मैनुफैक्चरिंग मॉडल, जिसके लिए मुझे लगेगा आपका सपोर्ट और थोड़े से पैसे। मैं रेज कर रहा हूँ 55 करोड़, जिसमें से 20 करोड़ मेरे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स ने कमिट किए हैं।
10: तो अभी कुछ रेवेन्यू वगैरह आपका हो रहा है?
9: आज की डेट में हम हर मंथ अपना रेवेन्यू डबल कर रहे हैं। सो फर्स्ट मंथ हमने स्टार्ट किया था 4 लाख से, फिर 8, फिर 12, इस महीने 20 पे क्लोज करेंगे, नेक्स्ट मंथ अराउंड 50 पे। By December, we should reach 1 crore per month of MRR, monthly revenue rate.
10: Customer के लिए hook क्या है तुम्हारा?
9: Sir, इसकी durability भी ज़्यादा है. So, वो 8 से 10 बार तक डब्बे को reuse भी कर पाए थे, जबकि thermocol को वो एक ही बार reuse कर पाते हैं.
10: The space is interesting and I can't commit right now because there's a little bit of number mismatch in my mind. We'd love to catch up on this.
11: Sir, would love to, if we can suggest wings for him.
2: हाँ, ठीक.

0: Mentors, course. आज वंदे भारतम के इस कारवां में आप भी जुड़ गए हैं। अगर किसी इनोवेटर के आइडिया ने आपको इम्प्रेस किया है तो आप उनके लिए वोट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट एट vandebharatam.org और बाय स्कैनिंग द QR ऑन योर स्क्रीन। भारत की खूबसूरती ही यही है, यहाँ हर आवाज की अपनी जगह है, हर हुनर की अपनी पहचान है और हर सपने के लिए एक मौका है। देखिए वंदे भारतम के सारे एपिसोड्स ऑन NDTV इंडिया, NDTV 24/7, NDTV प्रॉफिट और NDTV के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल के भारत में।
1: Annie is our self-learning braille literacy device which teaches children how to read, write and type in braille through audio-guided and gamified lessons.
2: Annie is in 14 languages and more than 70% of our deployments are in non-metro areas.
3: Sir, मैं भी झुंझुनू राजस्थान से हूँ, आप भी सर झुंझुनू से हैं, एक सर गाना हो ही जाए।
0: ये आपको करना पड़ेगा सपनों

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यह तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा प्योर मसाला।
5: Across the country, he has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Call, covering

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यह तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
0: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूं? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा प्योर मसाला।
5: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ। 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे
1: अक्रॉस द कंट्री
2: ही हैज ट्रैक्ड द पल्स ऑफ पावर फ्रॉम वॉशिंगटन टू कोरिया विटनेस्ड हिस्ट्री बीइंग मेड इन ग्लोबल कैपिटल्स एंड कॉन्फ्लिक्ट ज़ोन्स brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else, only on NDTV Network. 3 decades of watching the world change. Of asking the questions that couldn't wait. Telling the stories that couldn't be ignored. Of holding the line when it mattered most. Times change. Our purpose doesn't. NDTV 24/7 is now NDTV. When it really matters.

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे
1: अक्रॉस द कंट्री
2: ही हैज ट्रैक्ड द पल्स ऑफ पावर फ्रॉम वॉशिंगटन टू कोरिया विटनेस्ड हिस्ट्री बीइंग मेड इन ग्लोबल कैपिटल्स एंड कॉन्फ्लिक्ट ज़ोन्स brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else, only on NDTV Network. 3 decades of watching the world change. Of asking the questions that couldn't wait. Of telling the stories that couldn't be ignored. Of holding the line when it mattered most. Times change, our purpose doesn't. NDTV 24/7 is now NDTV, when it really matters.
0: मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज़

0: बोलो जुबान केसरी।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा,
3: सबका राजा प्योर मसाला।
4: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.

आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे अक्रॉस द कंट्री ही हैज ट्रैक्ड द पल्स ऑफ पावर फ्रॉम वॉशिंगटन टू कोरिया witnessed history being made in global capitals and conflict zones, brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else, only on NDTV Network. Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani, aur pure vermicelli, swadisht. सेहतमंद हर रोज थ्री डेकेड्स ऑफ वॉचिंग द वर्ल्ड चेंज ऑफ आस्किंग द क्वेश्चंस दैट कुडंट वेट ऑफ टेलिंग द स्टोरीज दैट कुडंट बी इग्नोर्ड ऑफ होल्डिंग द लाइन When it mattered most. Times change. Our purpose doesn't. NDTV 24/7 is now NDTV. When it really matters.

0: the building is looking like. Only one entry and exit point. I was trying to talk to some of the hostelers, some of the girls who are staying over here, but they are now a little bit scared. They've been told that they've been given strict instructions by their warden to not speak to media. Many students have come up to me and said that, you know, the specific hostel that fell down, they had asked their friends to not stay in that specific hostel so as to ensure that something like this does not occur. Now, the big question, like I said earlier also, was that how many tragedies is it going to take for us to realize that human life comes ahead of anything. It comes ahead of any economic gains, any cost-cutting measures at all.
1: That was the ground report that my colleague Reet Korsani had sent for us. A lot of reactions have come in on the story, different voices that we get from you. What are the bystanders saying? We also have some eyewitnesses who have spoken to NDTV. Listen into these voices and reactions.
2: कमेटी बना दी है, कमेटी इसकी जांच पड़ताल करेगी और जैसी उसकी रिपोर्ट आएगी, जो लोग भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मकान मालिक के खिलाफ FIR दर्ज हो गई है और शायद उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है।
3: तो चाहते हैं ये बच्चे उसमें बच जाएं, पहले रेस्क्यू होने दीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट है, सभी जायज आपके इस समय सभी जायज हैं, बहुत कमियां हैं सिस्टम में, बहुत कमियां मैं मानता हूं, लेकिन पहले अभी रेस्क्यू होने दीजिए। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं।
4: अपने सभी कॉलेजेस को कह दिया है, वो एसेस कर रहे हैं कि कितने बच्चे यहाँ रहते हैं और जितने बच्चे भी यहाँ रहते हैं हम उनको वापस अपने कॉलेजेस में बुला रहे हैं। अंदर से फोन भी आ रहा है, अंदर से एक आध वीडियो कॉल भी आई है, बच्चे की फोन भी आ रहे हैं। थोड़ा सा उससे लगता है कि बच्चे ठीक ठाक निकल आए सबसे पहले, दैट इज द प्राइम कंसर्न।
5: 1:30 बजे के आसपास हमें सूचना मिली कि यहाँ पर दुर्घटना हुई है। हम तुरंत अपनी मीटिंग को खत्म करके यहाँ पर सब भागे हैं, रवाना होकर पहुंचे हैं। तो यहाँ पर हमारे डिस्ट्रिक्ट साउथ के DM साहब लक्ष्य सिंगल जी यहाँ पहुंचे हुए थे, SDM मेहरोली सर यहाँ पहुंचे हुए थे। सभी ने अच्छे मार्गदर्शन से बहुत अच्छा काम करवाया। इतनी कंजेस्टेड गलियाँ हैं, भीड़ थी, लोग यहाँ पर एग्रेसिव हो रखे थे, लेकिन सबको अच्छे से कंट्रोल किया। दिल्ली पुलिस, NDRF सभी पहुँच के बहुत अच्छा
6: काम। लोगों को निकाला गया,
5: अभी 5 के आस इंजर्ड को निकाला गया है।
1: And as expected, the Satyaniketan building collapse has now turned into a political flashpoint in Delhi. Aam Aadmi Party and Congress are training their guns on BJP government, demanding accountability. Government is now alleging that Aam Aadmi Party is taking political pot shots at a time when rescue and relief should be the focus. AAP is now alleging that corruption in the MCD building department is fueling repeat collapses in the national capital. Saurav Bharadwaj claims that the system has failed to change despite repeated building safety audits. Congress is targeting the state government over the collapse, with the MP making a statement. We have MP Dipinder Hoda, who's questioned the response of the civic and the local authorities. He claims that the student themselves rescued 3 children while police and ambulance arrived late on the spot.
7: जी, काफ़ी दुखद है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं और छोटे बच्चे जो है दबे हुए। हमारे यही है कि बच्चों को बचाया जा सके और एक एक जान जो है वो कीमती है, वो बचे, ये बहुत ज़रूरी है।
8: मैं एक देश के नागरिक के रूप में, एक युवा होने के नाते और दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक एक्स स्टूडेंट होने के मैं नाते आया हूँ। पिछले 3-4 साल से हर साल ये इंसिडेंट हो रहे हैं। आज इससे ज़्यादा दर्दनाक बात हो नहीं सकती, इतने ज़्यादा दर्दनाक बात हो नहीं सकती। आज 25-30 स्टूडेंट्स अभी अंदर ट्रैप होने का अंदेशा है। पता नहीं क्या एग्जैक्ट नंबर अथॉरिटीज़ ने अभी तक बताया नहीं है और अंदाज़ा लगाया जा रहा है। 3 बच्चों को निकाला, हमारी टीम लगी थी स्टूडेंट्स की, उन्होंने बच्चों को निकालने का काम किया, लेकिन उसमें से भी एक बच्चे की जान बच नहीं पाई है और बाकी अपना हॉस्पिटल लेके गए हैं। और आपको याद होगा, आप खुद भी शायद उस टाइम थी, साकेत में भी 5 बच्चे ऐसे ही, 5 स्टूडेंट लॉस देयर लाइफ। मैंने जब तब भी आया था तभी आप लोग को सामने मैंने यही बात कही थी। अथॉरिटीज़ ये इसी साल की बता रहा हूँ, 31 मई को, पिछले साल भी हुआ एक PG हॉस्पिटल में, उससे पिछले साल 3-4 साल से लगातार PG हॉस्टल्स के अंदर ऐसे बच्चों की जान जा रही है, लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहा। यहाँ
9: सवाल यही खड़ा होता है कि लगातार जो बिल्डिंग कोलैप्स हो रही है उसके बावजूद भी एडमिनिस्ट्रेशन हो, सरकार हो, उनका बहुत बड़ा फेलियर दिखाई दे रहा है। आपको लगे सवाल के जवाब मिले?
8: रेस्क्यू में भी फेलियर देखो, यहाँ बच्चे लग गए थे बचाने, लेकिन कितनी देर बाद पुलिस पहुंची, कितनी देर बाद एम्बुलेंस पहुंची, कितनी देर बाद फायर डिपार्टमेंट पहुंचा। और सुनो, आप इनमें NDMC, MCD, ये जो PG हॉस्टल चल रहे हैं, इनके नक्शों का कौन जिम्मेदारी, फायर की, फायर सेफ्टी की कौन जिम्मेदारी, और यहाँ के जो लोकल पॉलिटिशियंस हैं उनका क्या रोल है? कौन आंसर करेगा? अथॉरिटी को आंसर तो करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल करना पड़ेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस जो है ये आज इतना दर्द है देश के दिल के अंदर कि उसको बयान नहीं किया जा सकता। आई एम अशेम्ड दैट आई वॉज ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड आई एम हैविंग टू सी दिस डे।
10: एमसीडी है ना, अब ये चार इंजन की सरकार है, एलजी इनके पास है, दिल्ली सरकार इनके पास है, ठीक है, और एमसीडी इनके पास है और केंद्र इनके पास है, तो एमसीडी को सिर्फ उघाई के अलावा कोई काम नहीं है। और एमसीडी इतनी लापरवाह है उसे इस बात का फिक्र नहीं है। एमसीडी अगर अपना काम करे तो ये सब लापरवाही होगी ही नहीं, तो एमसीडी अपना काम करने को तैयार नहीं है। और किसी ना किसी की तो जवाबदेही फिक्स होनी चाहिए ना। यहाँ पर जैसे हुआ ओखला में, तो किसको इन्होंने किया? एक जेई जिसका कोई लेना देना नहीं है, एसटीपी से पानी आ रहा है, इतना पानी आ रहा है, तो लेकिन ये ऐसे ही किसी भी एक जेई पर, यहाँ भी किसी एक जेई पर या एई पर जो है तलवार लटका देंगे। क्यों नहीं कमिश्नर, क्यों नहीं मेयर पर जवाबदेही होनी चाहिए, क्यों नहीं एलजी की जवाबदेही फिक्स होनी चाहिए? जब तक ऊपर वालों की जवाबदेही फिक्स नहीं होगी कुछ नहीं होगा।
1: Now let's tell you more about this story. A customer in Greater Noida allegedly found a maggot-like object in fried chicken ordered from KFC outlet at Gore City Mall. Now following the complaint, the food department has inspected the outlet, collected samples for examination. KFC has responded to the allegation while the claim is yet to be independently established. These are images that we have taken from the social media of the user who had tweeted it out and said that this is a maggot-like object that was found inside the chicken that he had ordered at KFC, Kentucky Fried Chicken, an American food chain. Of course, is a big chain here in India as well and across the world. Tanushka Datta with us on the broadcast. Tanushka, what do we know so far?
11: Right, so in this video that we're seeing, you know, a worm inside this deep fried chicken at a KFC outlet in Gore City Mall in Greater Noida's West area is going viral on social media. Among the many food safety concerns that have come up in the past couple of months at this point, this is yet another major concern regarding meat quality and food safety. According to this video and the customer had ordered this deep fried chicken from this KFC outlet, and it's spotted that a worm is inside this particular chicken that is being eaten. And subsequently, the customer posted it to social media, and thereafter, food safety officer of the area has also taken cognizance of this and has inspected this particular concerned KFC store as well. Now, KFC, again, even though it's deep fried chicken, it's very popular amongst people, especially children as well. So it's no stranger to daily food outings as well to people. And it is definitely concerning that this has again come about from a very popular food store.
1: Thank you, Tanushka, for putting all of that into perspective. We'll of course keep coming back to you for more on that story. For the first time, you're seeing devastation on the Chinese side of Nepal-China border from the very epicenter of the deadly August 26 flash floods. These never-before-seen visuals show you the Guirong Immigration Post, once a key border facility before the floods, and what remains after a massive wall of rock, ice and mud engulfed it. And the next set of visuals that on your screen, they just show how swiftly the floods transformed the Chinese side of the border, not for good. On top, the Guirong Immigration Center standing intact at the Rasuwagadhi border, a key gateway between Nepal and China. But on the right is the same location after the August 26 flash floods. The entire facility has been swept away, leaving behind only rock, mud, debris and the ravaged riverbed. The Chinese Immigration Center at the site at Rasuwagadhi has been reduced to rubble after devastating floods and landslides. 31 people have lost their life. 550 remain missing. That's a huge number. That includes 250 foreigners, 49 Indians on the Chinese side. Rescue operations are underway.
12: Yeah, this is indeed a unique place. After the disaster, you just can't make out the border between Nepal and China. Behind me is the Nepalese flag. And now you see I'm standing here at the on the Chinese side, but where is the building? The massive building that was hosting a number of probably scores of Chinese officials, as well as hundreds of people trying to enter and exit China at the time, all went missing. Look at that. If you can just pan around, see the amount of destruction

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी। हिंदुस्तान मिले
2: हिंदुस्तान से। देश का टायर जेके टायर।
3: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
4: वाओ मामा क्या स्वाद है।
3: अरे मेरे राजा। सबका राजा आर्थर मसाला।
5: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ। 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.

0: If a boy from Ahmedabad could build what stands here today, then there must be 1,000 more Gautam Adanis simply waiting for someone to notice them.
1: इसी सोच के साथ संघर्ष की खदानों में छिपे देश के हीरों को तराशने के लिए श्री गौतम अदानी ने शुरू किया देश का सबसे बड़ा ग्रास रूट्स इनोवेशन मूवमेंट वंदे भारतम। एक ही महीने से कम समय में देश भर से जुड़े लाखों लोग, हजारों सपने, टॉप मेंटर्स, कई शीर्ष नेतृत्व, बदलने देश के स्टार्टअप का सीन, करने करोड़ों का निवेश, आइडियाज को साल भर वेलकम करने के लक्ष्य के साथ। तो मंच है शानदार, करोड़ों की प्राइज मनी का हो रहा है ऐलान, स्पेशल कैटेगरी पर भी है खास ध्यान। और बात सिर्फ पुरस्कारों तक सीमित नहीं है, क्योंकि हो सकता है मेंटर्स को किसी इनोवेशन या बिजनेस आइडिया में पोटेंशियल नजर आता है तो वे शुभारंभ के लिफाफे के साथ कर सकते हैं उसमें इन्वेस्ट। या ये भी हो सकता है कि किसी इनोवेटर की कहानी और उनका स्ट्रगल किसी मेंटर को इंस्पायर कर दे तो वे उन्हें दे सकते हैं वंदे विंग्स, जिसमें उन्हें मिलेगी अदानी ग्रुप के साथ 10 दिनों की मेंटरशिप। और अगर आपका आइडिया नहीं बन सका हमारा भागीदार तो निराश न होना, बस रजिस्ट्रेशन करो, पाओ निवेश में मदद, मेंटरशिप या अदानी ग्रुप का सहकार। और हाँ, ऑडियंस भी हमारे पोर्टल पर जाकर इनोवेटर्स को वोट कर सकती है, और यदि आपका टॉप 5 का सिलेक्शन मेंटर्स के सिलेक्शन से मैच होता है तो 3 लकी विनर्स को मिलेगा स्पेशल प्राइज। तो अब क्यूरियोसिटी कम करते हैं और इनोवेशन की ओर आगे बढ़ते हैं।

वेलकम टू वंदे भारतम, एन इनिशिएटिव बाय गौतम अदानी। मैं हूं राजीव खंडेलवाल और एक बार फिर आपको ले चलता हूं भारत की नई सोच यानी वंदे भारतम के मंच की तरफ। एक बार फिर मैं आपको मिलवाता हूं हमारे आज के मेंटोर्स। प्लीज वेलकम अंकुर धैया, मिस्टर प्रथम मित्तल, विजय केडिया, डॉक्टर अपूर्व रंजन शर्मा। तैयार हो जाइए भारत के उन इनोवेटर से मिलने के लिए जो सिर्फ सपने नहीं देख रहे, उन्हें हकीकत में बदल रहे। चलिए बुलाते हैं हमारे अगले इनोवेटर को। तो प्लीज वेलकम झुंझुनू राजस्थान से प्राइमरी हेल्थ टेक के इनोवेटर डॉक्टर साहिल।

0: जगनानी। नमस्ते सर।
1: बहुत अच्छा सर।
0: मेरे राज्य से हैं आप? राजस्थान से। मैं जयपुर का हूँ, आप झुंझुनू के
1: हैं? सर
0: आपके पिच रेडी है?
1: पिच रेडी है सर।
0: आपके पास में 3 मिनट है और आपका चमकने का समय शुरू होता है सर। आप
1: थैंक यू। आज 10 मिनट में आपको ग्रोसरी मिल जाती है और 203 मिनट में कैब बुक हो जाती है और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन तो 2 से 3 सेकंड में हो जाते हैं, लेकिन व्हाट अबाउट हेल्थ केयर? आज आपको रात को आप समझिए कि 102 से 103 डिग्री बुखार हुआ, आपको वीकनेस हुई, चेस्ट कंजेशन हुआ, आप क्या करते हैं? आप डॉक्टर को कॉल करते हैं या डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर बोलता है कि जाके कुछ टेस्ट करवा के आइए। वो जो टेस्ट की रिपोर्ट है उसको आने में 1 से 2 दिन का समय लग जाता है और ये चीज़ रूरल एरिया में तो और बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, जहाँ पे 20 से 30 किलोमीटर तक उनको जाना पड़ता है और ये बहुत बड़ा बैरियर है जो हेल्थ केयर डिलीवरी में कन्वीनियंस की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसको हम लोग सॉल्व करना चाहते हैं। नमस्ते, मैं डॉक्टर साहिल जगनानी, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ मोबी लैब हूँ। मैंने IIT से BTech करने के बाद में ये सोचा कि कुछ इम्पैक्ट सेक्टर में कैसे काम किया जाए, तो मेरे प्रोफेसर थे IIT गुवाहाटी में डॉक्टर दीपांकर, उन्होंने बोला कि इस टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि इंडिया में मेडिकल डिवाइस बने जो हम लोग आज इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो हम लेके आए हैं मोबी लैब, जो लैब इन अ बॉक्स है जिसके अंदर आपको 100 से ज़्यादा पैरामीटर, लीवर, किडनी, हार्ट, अनीमिया, डायबिटीज़ के आपके सामने 30 मिनट्स में तुरंत हो जाएंगे। ये डिवाइस हमने IIT गुवाहाटी, एम्स और ICMR के साथ बनाया है। ये CDSU अप्रूव्ड डिवाइस है, हमारे 35 से ज़्यादा पेटेंट है इस डिवाइस के, 7 पब्लिकेशन है और 10 हॉस्पिटल से ये वैलिडेट हो चुका है। ये डिवाइस आज 300 से ज़्यादा क्लिनिक्स में आज ये काम हो रहा है। अभी बिकॉज ऑफ AI हमने इसके अंदर आई टेस्टिंग डाल दिया है स्क्रीनिंग के लिए, ईयर टेस्टिंग डाल दिया है, स्किन में आप फोटो लीजिए और IgE का टेस्ट करवा लीजिए, आपको वहीं पर रिपोर्ट मिल जाएगी। तो इस पे भी R&D चल रही है, हम ट्रायल्स कर रहे हैं। पैथोलॉजिस्ट के लिए हमने एक Patho.AI बना दिया है जिसमें रियल टाइम में 90% ऑफ द काम जो पैथोलॉजिस्ट का होता है वो रिमूव हो रहा है। हम चाहते हैं कि ये जो मॉडल हम लोग इंडिया में डिप्लॉय किए हैं, दिस इज गोइंग टू हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट अक्रॉस ग्लोब, जहाँ लोगों को हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है, गाँवों में वहीं पर टेस्ट हो जाए, यही हमारा मिशन है, जहाँ पर हम चाहते हैं अगले 5 साल में 1 बिलियन लोगों के टेस्ट किए जाएं और एटलीस्ट 1 मिलियन लोगों की हम लोग इससे क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव कर पाए, यही हमारा मिशन है।
0: फैंटास्टिक, आपने अपना आस्क नहीं बताया।
1: हम लोग इस समय 8 करोड़ रुपए रेज कर रहे हैं, 100 करोड़ रुपए इसकी वैल्यूएशन की।
2: इससे पहले कितना रेज किए?
1: हमने टोटल 3 मिलियन रेज किया है।
2: कितना डायल्यूट किया?
1: हमारा 30% के करीब डायल्यूट हो चुका है।
2: टॉप लाइन बॉटम लाइन क्या है अभी?
1: लास्ट ईयर हमारा पहला साल था कमर्शियलाइजेशन का, हमने 3.85 करोड़ रेवेन्यू किया है, वो भी सिर्फ प्राइवेट से। अभी हमारे रेवेन्यू चैनल्स में 3 सेगमेंट पे हम फोकस कर रहे हैं। प्राइवेट में हम डिजिटल क्लिनिक बना रहे हैं, जैसे निको हेल्थ करके एक स्टार्टअप है US में, वो एंड टू एंड आपको हेल्थ केयर दे रहा है। दूसरा हमारा सेगमेंट है गवर्नमेंट के साथ, तो दिस प्रोडक्ट हैज़ बीन अप्रूव्ड बाई डिफेंस, 7 लोकेशन वी डिड द क्लिनिकल ट्रायल्स एंड वी आर वर्किंग विद देम, NHM के साथ हम लोग इस प्रोडक्ट के लिए काम कर रहे हैं। एंड द थर्ड इज डेफिनेटली फाउंडेशन एंड NGO जिनके साथ में हम काम करना चाहते हैं।
3: साहिल, पहली बात तो एक बहुत बड़ा सलाम आपको कि आपने बिल्कुल ग्रास रूट से, मतलब अपनी PhD करते करते इस प्रोडक्ट को बनाया है, तो अभी तो पहले मैं वो डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने कैसे किया होगा, कितनी मुश्किलें आई होंगी।
4: बिल्कुल सर, जर्नी के बारे में बताइए कि कैसे आपने इसको डेवलप किया।
1: सो 2013 में जब मैं ग्रेजुएट हुआ तो उसी समय मेरे फैमिली में एक हुआ था इशू कि माई मदर गॉट कैंसर। सो मैंने 6 महीने की जर्नी देखी और मैंने समझा Stage 1, Stage 2, Stage 3 कैंसर क्या होता है। फिर मैंने खुद की कंपनी चालू की, बूटस्ट्रैप की, बट मेरे को लगा कि दिस इज़ नॉट वॉट आई वॉज सपोज टू डू, मेरे को कुछ इम्पैक्ट सेक्टर में, हेल्थ में करना है, तो आई हैव लेफ्ट दैट कंपनी एंड देन इंडिया में यदि कुछ बनाना है तो डीप टेक में जाना होगा। तो 4 साल बैठ के नैनो टेक्नोलॉजी सीखी वापस से एंड अभी भी हम लोग IIT गुवाहाटी और एम्स के साथ में काम करें। बहुत प्रॉब्लम आई बिकॉज नोबडी वॉज अंडरस्टैंडिंग कि ये क्या कर रहे हो आप, लेकिन पर्पज बड़ा क्लियर है कि रूरल एरिया में कोई बात नहीं करना चाहता, सब लोग बोल रहे हैं हॉस्पिटल बड़ा बनाना है, बट आई थिंक आई हैव फाउंड समवेयर कि मेरे को पर्पज मिल गया लाइफ में कि हर गांव तक मोबाइल ऐप पहुंचेगा सर।
5: लेकिन ये सब क्या होता है, जैसे लैब का जो टेस्टिंग होता है,
1: हाँ,
5: वो सर डॉक्टर्स लोग का कमीशन होता है,
1: हाँ,
5: दूसरी लैब की रिपोर्ट वो लोग मानते भी नहीं,
1: बिल्कुल नहीं
5: बोलेंगे मेरी लैब में जाओ, यही कराओ, उसको मैं नहीं मानता,
1: बिल्कुल सर।
5: उसको कैसे टैकल करोगे
1: सर? ये बहुत बड़ा चैलेंज है। अभी हमारा टारगेट है जो 300 क्लिनिक, या वी आर इन टू द B2B स्पेस, हम लोग क्लिनिक्स को ये डिवाइस दे रहे हैं, क्लिनिक्स आगे जो चार्ज कर रहा है उस वैल्यू चेन में हम लोग कोई डिसरप्शन अभी नहीं कर रहे। इस मशीन की MRP है 10 लाख रुपीस, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत कम है और हमारी जो ट्रांसफर प्राइस है वो भी बहुत कम है, लेकिन हम MRP उसका 10 लाख रुपए रखें।
6: साहिल, हमारा बिजनेस मॉडल क्या है? हमें डिवाइस बेचना है हॉस्पिटल को या वो 10x10 के क्लिनिक बनाने हैं?
1: अभी के लिए हमारा बिजनेस मॉडल B2B सेक्टर में है। यदि मैं खुद के क्लिनिक बनाऊंगा तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स इश्यूज होंगे, उसको हम काउंटर करने के लिए अभी B2B सेगमेंट में जा रहे हैं। और हमारे रेवेन्यू मॉडल भी 3 तरह के हैं। हम डिवाइस बेचते हैं, हम कंज्यूमेबल जो हमारा प्रोप्राइटरी है विच इज़ अ क्लोज सिस्टम हम ही से खरीदने पड़ेंगे आपको, तो LTV इज़ वेरी हाई फॉर अस।
7: चैटर्जी जी, आपसे एक सिंपल क्वेश्चन है।
1: बिल्कुल सर।
7: हाउ मेनी इयर्स ओल्ड कंपनी यू आर?
1: 8 years.
7: Single founder or double founder?
1: So I have a founder from IIT Guwahati and a founder from AIIMS New Delhi.
7: तो आप 8 साल के बाद पिछले साल कितना धंधा किया?
1: 4 crore सर।
7: 8 साल के हिसाब से कमर्शियल प्रोग्रेस तो बहुत अच्छी नहीं है। इसका मतलब आपने जो पेटेंट कमाए हैं वही आपकी अर्निंग है?
1: करेक्ट।
7: आपकी जो कंपनी है वो मुझे क्या ऐसे 3 प्रोडक्ट बता रही है? तो या तो आप प्रोडक्ट कंपनी हो, मेडिकल इक्विपमेंट प्रोडक्ट कंपनी जो भी है,
1: करेक्ट,
7: ठीक है, तो वो 3 प्रोडक्ट बता दो।
1: सर, हम लोग जो टारगेट कर रहे हैं, हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि जैसे डॉक्टर का एक क्लिनिक है, एक सिंगल प्रैक्टिसिंग डॉक्टर क्लिनिक, मैं बता रहा हूँ, इस मशीन की जो कैपेबिलिटी की ये एक दिन में 30 से 40 पेशेंट कर सकती है। डॉक्टर लाल के पास जो मशीन है वो कर सकती है दिन में 400 से 500 टेस्ट।
7: Correct.
1: हमने बोला डॉक्टर के क्लिनिक में आप जाते हो, आप ना सैंपल डॉक्टर लाल को देते हो, उसकी रिपोर्ट आने में आपको अगले दिन वापस आना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूँ आपको 30 मिनट में वहीं पे आपको सारा रिजल्ट मिल जाएगा, अगले दिन आने की जरूरत नहीं है, वहीं पे कंसल्ट करो। तो हमारे जितने भी क्लिनिक 300 बने हैं वो डिजिटल क्लिनिक है, जहाँ डॉक्टर बैठा है या डॉक्टर टेली कंसल्टेशन से आता है, वहीं पे हम लोग टेस्ट करके 30 मिनट में रिपोर्ट दे रहे हैं, जहाँ पे 20 से 25 पेशेंट से ज़्यादा का लोड नहीं है। तो हमने जो ये डिवाइस बनाया है स्पेसिफिकली फॉर प्राइमरी केयर बनाया है, नॉट फॉर टर्शरी केयर, नॉट फॉर सेकेंडरी केयर, ये प्राइमरी केयर को हम लोग
6: रिवर्ट बोल रहे हो कि मुझे गांव-गांव पहुंचाना है, क्योंकि
1: यस, हमारी नॉट ओनली गांव-गांव, ये आप अर्बन एरिया में भी फार्मेसी पे लगने वाला है। इसकी एक्सेप्टेबिलिटी विल ऑलवेज बी क्वेश्चन, बट द एक्सेप्टेबिलिटी विल ओनली कम वंस वी गो मोर इन द मार्केट, वी विल डू मोर टेस्ट। इनिशियली 10 डिवाइस बेचना बहुत डिफिकल्ट था, अभी हम 300 डिवाइस बेच चुके हैं एंड वी विल डेफिनेटली गो थ्रू इट। इट इज अ जर्नी फॉर अस कि डॉक्टर्स के क्वेश्चंस को एक्सेप्ट करके करना है।
7: किसी ने मेंटर किया आपको अभी तक?
1: डेफिनेटली ये मंच पे सर आने का पर्पस भी यही था कि अब हम लोग इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं।
7: आई एम हैप्पी टू हेल्प यू, यू नो, सॉर्ट ऑफ टेक इट टू द फॉर अ मेंटरशिप।
8: डॉक्टर साहिल, कैसा महसूस हो रहा है आपको?
1: बहुत अच्छा। मेरे को लगता है ये मेंटरशिप जो सर की रहेगी, क्योंकि हेल्थ केयर में बहुत सारा काम किया सर ने, तो वी आर रियली एक्साइटेड कि हम कैसे इसको आगे गांव-गांव तक लेके जाएं। एंड आपसे भी मैम हेल्प चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन रिमोट एरिया में।
6: एब्सोल्युटली, वी कैन फिगर आउट समथिंग। वी हैव फिजिकल टच पॉइंट्स, वी हैव फिजिकल स्टोर्स,
1: ठीक है,
6: आप उसके अंदर कुछ कर सकते हैं साथ में।
1: बिल्कुल।
6: देयर आर फ्यू अदर दोस्तों की कंपनीज जो रूरल हेल्थ केयर में भी काम करती है।
3: आई हैव अ ऑफर फॉर यू, इस ब्रिज राउंड में मेरे को एलोकेशन तो जरूर चाहिए।
1: थैंक यू सो मच।
3: तो इरिस्पेक्टिव ऑफ बाकी का क्या ऑफर है, जो आप 8 crore यहाँ पे 100 crore की वैल्यूएशन पे रेस कर रहे हैं, उसमें से 1 crore की एलोकेशन,
1: ओके,
3: तो आप मेरे लिए बुक कर दीजिए। आई एम मैचिंग द आस्क दैट यू हैड ऑफ द वैल्यूएशन।
1: थैंक यू।
3: सो आई एम टेकिंग द 1 crore बेट ऑन दिस। वुड लव टू वर्क विद यू टू सी वेयर वी कैन टेक।
1: श्योर।
3: थैंक यू सर। दिस इज अ
1: थैंक यू सो मच सर।
3: एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू सी व्हाट हैपेंस। ऑनेस्टली व्हाट यू हैव बिल्ट,
1: थैंक यू सो मच,
3: इट्स ऑलमोस्ट लाइक मैजिक। पर जैसे जैसे आपकी स्टोरी सुनी और आपने क्वेश्चंस के जवाब दिए इतने कॉन्फिडेंटली, तो हमें समझ आया कि दिस इज नॉट अनदर थेरानोस।
1: नो, इट इज नॉट थेरानोस।
3: सो वेरी एक्साइटेड एंड थैंक यू, लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग टुगेदर।
1: थैंक यू सो मच।
0: दैट्स फैंटास्टिक, मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस सर। तो आपको पता है, एक चेयर से आपको मिली क्या?
1: फंडिंग।
0: दूसरे से क्या मिला?
1: डिस्ट्रीब्यूशन।
0: तीसरे से क्या मिला?
1: मेंटरशिप।
0: चौथे से मालूम है क्या मिलेगा आपको? वो जो आपको बहुत, जिसके आप बहुत शौकीन है।
1: बिल्कुल सर। सो सर, मैं भी झुंझुनू राजस्थान से हूँ, आप भी सर झुंझुनू से हैं, माई ब्रदर इज ऑल्सो CA, ही इज अ ग्रेट फैन ऑफ योर्स, एंड उन्होंने बोला है कि एक गाना सर, क्योंकि यू आर अ वेरी गुड सिंगर, तो एक सर गाना आपके थ्रू हो ही जाए।
0: ये आपको करना पड़ेगा सर।
1: ये करना पड़ेगा,
0: डिमांड है।
1: और ये आपको सर झुंझुनू की तरफ से, आपको ये गाना तो गाना आप मना नहीं कर सकते
0: सर। सर आइए,
3: तालियां तालियां
0: आज आप खाली आती जाएंगे, चारों मिनटों उसने कुछ ना कुछ आपको दिया
1: लेके जाएंगे।

0: ये गाना है
1: सर, वी अपने फ्री ऑफ कॉस्ट लिखा हमारे लिए। थैंक यू सो मच।
2: इसका कमाल है सर, इसका आईपी पहले ले लो।
1: थैंक यू वेरी मच सर, एंड मैनी मैनी कंग्रेचुलेशन सर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप टॉप फाइव फाइनलिस्ट में भी हमें मिले, वो अंत में मालूम पड़ेगा हमें, लेकिन अगर नहीं मिले तब भी मैं जानता हूँ कि आप बहुत तरक्की करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर, थैंक यू। विजय जी ये बताएं कि आप इतने कट्टर बिजनेसमैन हैं, ये गाना गाने का शौक कब डेवलप किया?
0: तो ऐसा है कि मैं बचपन से गाने गाते रहता हूँ, और एक बार ऐसा हुआ था कि मैं एनसीसी क्लास के लिए अप्लाई करने गया था, तो एनसीसी के लिए लेट हो गया था, एडमिशन बंद हो गया था, तो मैं बाहर जाकर क्लास के बाहर खड़ा रहता था। तो एक सरदार जी थे, वो कर्नल आते थे, एक बार दो बार आए, तीसरे दिन आए, बोले ये लड़का बार बार क्यों बाहर क्यों खड़ा रहता है? तो बोला कि सर इसका एडमिशन हुआ नहीं। किसी लड़के ने बोला, बोला ये गाना अच्छा गाता है ऐसे ही, उसने बोला अच्छा गाया, बोले गाना अच्छा, बोला अच्छा चल अंदर आओ। अंदर गया, बोला गाना गाएगा? बोला हाँ। बोले चल एक गाना गा, तो गाना गा दिया। बोले दूसरा गा, दूसरा गा, तीसरा गा, तीसरा गा दिया। बोले चलते रहे, एनसीसी में एडमिशन हो गया। वो फैक्ट है वो। तो उस दिन से शायद मेरे को ऐसे लगा कि ये काम होता है भाई, ऐसा होता है। तो गाना तो मैं गाते ही रहता हूँ।
1: एक्चुअली बहुत अच्छी चीज़ है, हॉबी हमेशा रहनी चाहिए आई थिंक फॉर किसी भी फील्ड में आप हो। अपनी जो हॉबी है जो बचपन से आपके साथ में रही है, I think that should always stay alive. That keeps you young, that keeps you motivated, that keeps you going also, I think.
3: Absolutely. Bahut hi badi. Absolutely.
1: Thank you. Scores, scores. Oh. बुलाते हैं हमारे अगले इनोवेटर को, जो हमारे अगले इनोवेटर्स यहाँ पर आ रहे हैं वो बेंगलुरु से हैं, तो प्लीज वेलकम बेंगलुरु कर्नाटका से थिंकरबेल के इनोवेटर दिलीप रमेश, अमन श्रीवास्तव, संस्कृति हावले एंड सैफ शेख। हाय गाइस,
4: हाय,
1: हाउ आर यू?
5: गुड
1: गुड। फोर ऑफ यू, चारों पार्टनर्स हो?
4: हाँ,
1: चारों के चारों रेडी हैं अपनी पिच के साथ में?
5: बिल्कुल।
1: योर टाइम टू शाइन स्टार्ट्स नाउ।
5: थैंक यू।
4: नमस्कार मेंटर्स, माझं नाव संस्कृती।
5: धन है सर दिलीप,
6: यन पेर सैफ,
7: और मेरा नाम है अमन। चार डिफरेंट बैकग्राउंड्स, चार डिफरेंट लैंग्वेजेस, और हम चार मिले बिट्स गोवा में, जहां थिंकरबेल लैब्स का जन्म हुआ। ग्लोबल ब्रेल लिटरेसी इज ओनली 10%, एंड 21st सेंचुरी में ये हमें बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने बनाया एनी।
5: Annie is our self-learning braille literacy device which teaches children how to read, write and type in braille through audio-guided and gamified lessons. Annie is also remote-enabled, which means teachers can track progress and guide learners even having to be without having to be physically present with the learners. So our research showed that combining braille and audio together gives the best outcomes, and that is what has led to Annie today. So far with all our work, we have Annie present in more than 450 centers across 26 states in India. And internationally, we have a footprint in 8 countries as well.
7: Annie is in 14 languages, and more than 70% of our deployments are in non-metro areas. Including hills of Leh to forests of Chhattisgarh, Annie is teaching visually impaired children all over.
6: ये जो इतनी ब्रेल बुक्स आप देख रहे हैं, ये सिर्फ क्लास 11th और 12th की बुक्स हैं। और यही नहीं, इन बुक्स को सिर्फ कुछ ही बार पढ़ा जा सकता है, बिकॉज उसके बाद इसमें डॉट्स दबने लगते हैं एंड रीडेबिलिटी कम हो जाती है। टू सॉल्व दिस वेरी प्रॉब्लम वी हैव मेड टैक्टेरा, आवर एआई नेटिव रिफ्रेशेबल ब्रेल डिस्प्ले दैट इज डिजाइंड फॉर एजुकेशन एंड प्रोडक्टिविटी। टैक्टेरा में स्टूडेंट्स हजारों से भी ज़्यादा बुक्स को स्टोर कर पढ़ सकते हैं, और साथ ही विथ एआई कोई भी चैप्टर को इंटरैक्टिव वे में सीख सकते हैं। इसके साथ हमारा AI इंक्लूसिव एजुकेशन मिडलवेयर ब्रेल डॉट एजुकेशन कोई भी टीचर को किसी भी टॉपिक पे ऑडियो ब्रेल लेसन्स बनाने में मदद करता है।
5: तो द लास्ट 10 इयर्स वी हैव बिल्ट अ वेरी कैपिटल एफिशिएंट बिजनेस। वी हैव रेज्ड अ टोटल ऑफ 8 क्रोर्स एंड विद दैट वी हैव जनरेटेड 41 क्रोर्स इन रेवेन्यू टिल डेट क्यूमुलेटिव टोटल, एंड वी हैव आल्सो बिल्ट अ पैटर्न पोर्टफोलियो ऑफ 5 ग्रांटेड पैटर्न।

0: आपको
1: भाई
0: कैसे पता?
1: ऐसा नहीं है कि ये मैं भी पूरा रिसर्च करके आया हूँ आपके ऊपर, पूरी छानबीन करके आया हूँ, ऐसे नहीं है।
0: तो विजय सर बेसिकली मैंने भी स्टार्टअप शुरू किया था अपने कॉलेज के टाइम पे। मुझे तब स्टार्टअप की नॉलेज नहीं थी, मुझे पता भी नहीं था कि जो मैं कर रहा हूँ वो स्टार्टअप है कि नहीं है। थॉट ये था कि अर्न वाइल आई लर्न, और हम लोगों ने एक टिफिन बिजनेस शुरू किया। हमने हमें लगा कॉलेज टाइम में कि यार एक काम करते हैं, पापा तब जो पॉकेट मनी बेचते हैं वो थोड़ी कम पड़ती है, सो लेट्स इंक्रीज आवर रेवेन्यूज नाउ। अभी तो मैं ये शब्द यूज़ कर सकता हूँ, उस टाइम पे तो पॉकेट मनी था। तो हम लोगों ने टिफिन बिजनेस शुरू किया, एक कुक हायर कर लिया हमने, और कुक के साथ हमने बोला कि हमारी पॉकेट मनी आती है, इतनी पॉकेट में डालेंगे, एक डब्बा बनाने में कितना पैसा लगता है उस पैसे के हिसाब से हमने डिसाइड किया कि हम इतने डब्बे देंगे तो इतना पैसा हम बनाएंगे। तो वो बिजनेस हमने शुरू किया, तकरीबन एक साल में सब पैसे डूब गए, सब पैसा हमारा पहला स्टार्टअप बिल्कुल डूब गया। और उसके बाद हम वापस हॉस्टल पहुंच गए, एंड ऑफ कोर्स लाइफ आगे चलेगी, बट नाउ व्हेन आई रिफ्लेक्ट ऑन इट मुझे लगता है कि उसने बहुत कुछ सिखाया था। दैट डू नॉट गेट इनटू इट जब तक आपको फुल नॉलेज ना हो। एंड उसके बाद जब जब काम किया तो वो बिल्कुल ठीक किया, उसके बाद ये स्टार्टअप खड़ा किया कि अच्छा ठीक है अब ये तुझे ये करना है। एंड सो इवेंचुअली आई काइंड ऑफ लर्न विदाउट नोइंग दैट व्हाट आई एम डूइंग, व्हाट आई एम लर्निंग फ्रॉम इट।
2: सो मेनी पीपल वुड बी वेरी वेरी मतलब सोच रहे होंगे कि मैं राजीव जी वाली जर्नी मेरी भी हो, तो आई होप बहुत लोगों की हो, बहुत स्टार्टअप भी, वो भी बहुत अच्छा स्टार्टअप था और ये भी बहुत अच्छा स्टार्टअप था, बहुत ही
0: सो मच। एंड आई होप दैट कि उनकी जर्नी जो है मुझसे कहीं ज्यादा अच्छी हो। प्लीज वेलकम पश्चिम मेदिनीपुर वेस्ट बंगाल से जीवा स्कोप के इनोवेटर तुनीर साहू, ऋषभ लाल और अरिजीत भुई। हेलो
3: हेलो,
0: हम लोग पहले मिल चुके हैं क्या? जी हाँ, मुझे याद है।

0: हॉस्पिटल या प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो भी आपके घर से 10 किलोमीटर दूर है। अब जैसे तैसे बस से, फिर टेम्पो से, फिर पैदल उनको एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर लेके तो जाते हैं, लेकिन अंदर पाते हैं वहाँ कोई डॉक्टर नहीं है, वहाँ है एक आशा दीदी। ये आशा दीदी बहुत मेहनती है, लेकिन प्रॉपर ट्रेनिंग के ना होने के कारण आपका लव्ड वन का डिजीज डायग्नोसिस नहीं कर पाती और बोलती है सब कुछ ठीक है। 3 दिन बाद आप घर आते हो और आप पाते हो सब कुछ ठीक नहीं था। ये कोई इंडिविजुअल मेरी स्टोरी नहीं है, ये स्टोरी है 60% इंडियंस की जो गांव में रहते हैं, जिनके लिए सिर्फ 30% ही डॉक्टर्स अवेलेबल है। एक लेग डायग्नोसिस क्रिटिकल कंडीशन में जिंदगी और मौत के बीच का अंतर होती है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने बनाया जीवास्कोप। जीवास्कोप एक AI पावर ऑस्कल्टेशन डिवाइस है जो मिनटों में आपके हार्ट और लंग्स का स्क्रीनिंग करके देता है, जिसके कारण क्लिनिकली एक्यूरेट डिसीजन ले सकता है। हमारी आज आप हमें सपोर्ट कीजिए इन डाटा कलेक्शन एंड मॉडल ट्रेनिंग, ऑल्सो इन इक्विटी टर्म्स वी आर होपिंग फॉर 90 लाख रुपीज फॉर 10% इक्विटी।
1: 17 सितंबर को क्या कर रहे हो?
0: जीवास्कोप बना रहे हैं।
1: तो 17 सितंबर को यदि हो सके तो आप दिल्ली आइए। दिल्ली में हम लोग मास्टर्स यूनियन में एक काफी बड़ा इवेंट होस्ट कर रहे हैं, बायोटेक समिट, तो जिसमें गवर्नमेंट के मोस्टली सारे सेक्रेटरीज, जॉइंट सेक्रेटरीज आए होंगे, जो हो सकता है आपके इस प्रोडक्ट को मासेस तक लेके जा सके। तो इफ पॉसिबल प्लीज आइए, वहाँ पे हमारे पास एक स्टार्टअप शोकेस भी है और वहाँ पे आई विल मेक श्योर दैट यू गेट द बिगेस्ट स्टॉल्स दैट यू कैन शोकेस दिस टू एज मेनी पीपल एंड होपफुली हेल्प विद द टेंडरिंग प्रोसेस।
2: बस आपको 17 सितंबर याद रखना, आप नहीं भूलेंगे, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि 17 सितंबर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन भी है। तो ठीक है, आप याद रखिएगा उस डेट को। थैंक यू सो मच इस मंच पर आने के लिए, हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ में।
0: थैंक यू सो मच।
2: स्कोर्स प्लीज।
3: और आज भी वंदे भारत हम के मंच पे देश के अलग अलग कोनों से अपने सपने लेकर आए हमारे इनोवेटर्स। आनंद गुजरात के मूरोपन ने अपने इनोवेशन से काउस की हेल्थ बेहतर की। जलगाईपुर वेस्ट बंगाल के एसेंशियल एक्वाटेक के इनोवेशन ने वहां के फिश फार्मर्स की मदद की। बेंगलुरु के जनित्री इनोवेशंस ने न्यूबॉर्न और मेटर्नल हेल्थ मॉनिटरिंग के लिए बनाया AI प्लेटफॉर्म। थाने महाराष्ट्र से आए किस्सा शुरू टॉकीज, जिनका सपना है गांव गांव तक सिनेमा को पहुंचाना, और उन्हें मिला अंकुर दहिया से पायलट का ऑफर।
4: अब आप हमारे इनोवेटर्स के फुल पिचेस हमारे अनप्लग्ड एपिसोड्स में देख सकते हैं।
2: आज वंदे भारतम के इस कारवां में आप भी जुड़ गए। अगर किसी इनोवेटर के आइडिया ने आपको इम्प्रेस किया है तो आप उनके लिए वोट कर सकते हैं वंदे भारतम के ऐप पर, हमारी वेबसाइट @vandebharatam.org और बाय स्कैनिंग द QR ऑन योर स्क्रीन। आप ये सारे एपिसोड देख सकते हैं NDTV 24/7, NDTV Profit और NDTV के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर। आत्मनिर्भर भारत का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हमारी प्रगति सिर्फ दूसरे देशों पर डिपेंडेंट नहीं, भारत एक्चुअली आत्मनिर्भर तब बनेगा जब अन्य देश भारत के इनोवेशंस पर डिपेंडेंट होंगे, और लगता है अब वो दिन बहुत दूर नहीं। वंदे भारतम के इस मंच पर हमारे इनोवेटर्स का सफर जारी रहेगा, फिर मिलेंगे भारत के नए कल में।
5: Frontier Markets has become the rural distribution infrastructure, layering an operating level with women and a scale level with technology.
6: बहुत कम लोग हैं जो इंडिया को नहीं भारत को कैटर करते, और ये उनमें से एक है।
7: TD क्वांटम क्लैडिंग इस नैनो कोटिंग सोलर पैनल पे सबसे टॉप सरफेस ग्लास होता है, तो हम ग्लास पे वो करते हैं।
8: We are IT incubated and MNRE supported.
9: क्या एनर्जी आपकी?
7: Thank you ma'am. It's a noble cause you're pursuing and takes a lot of courage to do what you're doing.
10: Across the country, he has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Yeah. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones, brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else, only on NDTV Network.

0: drive in the Kia Sorento.
1: Kia, movement that inspires.
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा,
4: सबका राजा प्योर मसाला।
5: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा,
6: सबका राजा आर्थ्य और मसाला।
7: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
8: आर प्योर शाही पनीर मसाला, delicious, healthy, every day.
9: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
8: Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani, R pure vermicelli, swadisht, sehatmand, har roz.
10: Dr. Roma, manual winding. चार लोगों के पास है ये।
11: कुछ इससे भी अनोखा।
10: कमला पसंद, सिर्फ एक अनोखा स्वाद, कमला पसंद पान मसाला।

0: Congress has slammed Prime Minister Modi's visit to SRCC and claimed that issues concerning students and the general public have been ignored in the Prime Minister's speech. They also claim that Rahul Gandhi forced BJP to chase Gen Z. And in the latest update, in the building collapse in southwest Delhi, we learned that so far three people have been reported dead, unfortunately. Many are still feared to be trapped under the debris. Rescue operations are underway. The incident is reported near Satyaniketan in southwest Delhi, with the fire department receiving an alert around 1:30 p.m. Several people are feared trapped under the debris. Fire department teams have reached the spot. They've begun the search and rescue operations. The search and rescue operations have been going on ever since 2 p.m. this afternoon. Rescuers are now combing through the rubble to locate anyone who may be trapped. The extent of the collapse, possible casualties, exact number of people trapped are yet to be confirmed. Prime Minister has condoled the loss of lives and said that the rescue efforts are underway in full swing. Delhi Chief Minister Rekha Gupta has expressed concern over the collapse, stating every possible effort is being made to rescue those trapped. We heard from the Home Minister as well, who tweeted about the incident and assured all possible medical assistance to the injured people.
1: बच्चों की जान है और कोई भी कल्प्रिट छोड़ा नहीं जाएगा, खास करके ये जिसका मकान है, जो यहाँ पे बिल्डिंग छोड़ के भाग गया, जो कि अंदर कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहा था, बेसमेंट में खुदाई कर रहा था, और जिसकी वजह से जो पिलर है वो डिसमेंटल हुआ और बिल्डिंग पूरी गिर गई, तो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी हो, और जिसके कारण से ये हादसा हुआ है सबको सजा भुगतनी पड़ेगी।
2: एनसीटी हो, दिल्ली सरकार की बाकी एजेंसियां हो, केंद्र सरकार की बाकी एजेंसियां हो, सभी रेस्क्यू एजेंसी यहां पर अथक प्रयास कर रहे हैं। अभी हमारी प्राथमिकता रेस्क्यू ऑपरेशन है। ईश्वर की कृपा से 11 लोगों को रेस्क्यू कर दिया गया है, जिसमें मेजोरिटी ऑफ द पीपल दे आर फाइन। और मैं आपके माध्यम से आश्वस्त आपको करना चाहूंगी कि रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने के बाद पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा।
3: एक कमेटी बना दी है, कमेटी इसकी जांच पड़ताल करेगी और जैसे ही उसकी रिपोर्ट आएगी, जो लोग भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मकान मालिक के खिलाफ FIR दर्ज हो गई है और शायद उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है।
4: तो चाहते हैं ये बच्चे उसमें बच जाएं। पहले रेस्क्यू होने दीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट है, सभी जायज हैं आपके इस समय, सभी जायज हैं। बहुत कमियां हैं सिस्टम में, बहुत कमियां मैं मानता हूं, लेकिन पहले अभी रेस्क्यू होने दीजिए। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं।
5: अपने सभी कॉलेजेस को कह दिया है, वो एसेस कर रहे हैं कि कितने बच्चे यहाँ रहते हैं, और जितने बच्चे भी यहाँ रहते हैं हम उनको वापस अपने कॉलेजेस में बुला रहे हैं। अंदर से फोन भी आ रहा है, अंदर से एक आध वीडियो कॉल भी आई है, बच्चे की फोन भी आ रहे हैं। थोड़ा सा उससे लगता है कि बच्चे ठीक ठाक निकल आए, सबसे पहले दैट इज द प्राइम कंसर्न।
6: NDRF की अभी दो टीमें वहाँ पर काम कर रही हैं, जिसमें करीब 70 लोग हैं, और वहाँ पर हम दो साइट्स पे जहाँ पर मैक्सिमम विक्टिम को निकालने, लाइव विक्टिम को निकालने की संभावना, उसको आइडेंटिफाई करके वहाँ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा NDRF की दो टीमें हमने रिजर्व रखी हुई हैं, इनकेस इनको रिप्लेस करना पड़े, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन 24 घंटा चलता है, इसको रोका नहीं जाता है। तो अगर ये टीम को हमको रिप्लेस करना पड़ेगा, दूसरी टीम फिर वहाँ पर टेक ओवर करके उसी रेस्क्यू ऑपरेशन को कंटिन्यू करेगी। और दो एडिशनल टीम बटालियन हेडक्वार्टर द्वारका में, वहाँ पर हमने स्टैंड बाय रखा हुआ है, ताकि अगर रिप्लेसमेंट की और टीम की ज़रूरत होगी तो 6 टीम हमने इसके लिए मार्क किया हुआ है।
0: My colleague Akhil Jameel, who is joining us live from Satyaniketan, Delhi, to give us more details about what's happening on the ground right now. Akhil, give us a sense about the rescue and relief operations. So what is happening right now?
7: Well, the multi-agency operation, rescue operation, is still on. Behind me, you can see the visual. Right now, the communication has been established with one of the students who are still stuck inside this debris. Right now, you can see there are several teams who are continuously working for the last 9 hours in order to rescue all those students who were basically trapped inside this very debris. Because if you see, at around 1:34 p.m., what we have seen.

0: getting the government over the collapse, with MP Dipinder Hooda questioning the response of the civic and the local authorities. He claims that the students themselves rescued three children while police and ambulances arrived late.
1: वो भी समस्याएं हैं, चाहे मकान गिरने का हो, चाहे कुछ भी गिरने का हो, वो हमारी सरकार जो है चिंता में है. आपको पता है कि जहां जिस कार्यक्रम में आए वहां रेखा गुप्ता जी नहीं आई, वो दिन रात वहीं स्पॉट पर जो है पड़ी हुई है. और हमारा काम होता है, ये जो पार्टी विथ अ डिफरेंस है भारतीय जनता पार्टी, हम काम करके दिखाते हैं, हमको नेतागिरी से बहुत मतलब नहीं है.
2: जी काफ़ी दुखद है. दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं और छोटे बच्चे जो है दबे हुए. हमारा यही है कि बच्चों को बचाया जा सके और एक एक जान जो है वो कीमती है, वो बचे ये बहुत ज़रूरी है.
3: भारतीय राजनीति में अगर कोई लुटेरा रहा है या राजनीतिक लुटेरे के तौर पे लोग प्रसिद्ध हैं, वो आम आदमी पार्टी के लोग हैं. और इस लूट की वजह से उनके बड़े बड़े नेता अरविंद केजरीवाल से लेके सिसोदिया से लेके तमाम लोग जेल गए हैं. इस विषय पे अगर सौरभ भारद्वाज राजनीति कर रहे हैं तो वो करें राजनीति, लेकिन हमारी प्रायोरिटी है कि वहाँ से बच्चे को निकाला जाए, जो बच्चे उस मलबे में फंसे हुए हैं. हम हमारी जो एजेंसीज हैं जो वहाँ पे कार्यरत हैं, लगातार काम कर रहे हैं, वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो भी वहाँ पे पूरी मदद कर रहे हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो लोग सकुशल बच्चे बाहर हैं.
4: जो बिल्डिंग कोलैप्स हो रही है उसके बावजूद भी एडमिनिस्ट्रेशन हो, सरकार हो, उनका बहुत बड़ा फेलियर दिखाई दे रहा है. आपको लगे सवाल के जवाब मिले चाहिए.
5: रेस्क्यू में भी फेलियर देखो. हाँ. यहाँ बच्चे लग गए थे बचाने, लेकिन कितनी देर बाद पुलिस पहुंची, कितनी देर बाद एम्बुलेंस पहुंची, कितनी देर बाद फायर डिपार्टमेंट पहुंचा. और सुनो, आप इनमें NDMC MCD ये जो PG हॉस्टल चल रहे हैं, इनके नक्शों का कौन जिम्मेदारी, फायर सेफ्टी की कौन जिम्मेदारी, और यहाँ के जो लोकल पॉलिटिशियंस हैं उनका क्या रोल है, कौन आंसर करेगा? अथॉरिटी को आंसर तो करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल करना पड़ेगा. लेकिन मैं समझता हूँ कि इस जो है ये आज इतना दर्द है देश के दिल के अंदर कि उसको बयान नहीं किया जा सकता. आई एम अशेम्ड दैट आई वॉज ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड आई एम हैविंग टू सी दिस डे.
6: MCD है ना, अब ये चार इंजन की सरकार है, LG इनके पास है, दिल्ली सरकार इनके पास है, ठीक है, और MCD इनके पास है और केंद्र इनके पास है. तो MCD को सिर्फ उघाई के अलावा कोई काम नहीं है, और MCD इतनी लापरवाह है उसे इस बात का फिक्र नहीं है. MCD अगर अपना काम करे तो ये सब लापरवाही होगी ही नहीं, तो MCD अपना काम करने को तैयार नहीं है. और किसी ना किसी की तो जवाबदेही फिक्स होनी चाहिए ना. यहाँ पर जैसे हुआ ओखला में, तो किसको इन्होंने किया, एक JEE जिसका कोई लेना देना नहीं है, STP से पानी आ रहा है, इतना पानी आ रहा है, तो लेकिन ये ऐसे ही किसी भी एक JEE पर, यहाँ भी किसी एक JEE पर या AE पर जो है तलवार लटका देंगे. क्यों नहीं कमिश्नर, क्यों नहीं मेयर पर जवाबदेही होनी चाहिए, क्यों नहीं LG की जवाबदेही फिक्स होनी चाहिए? जब तक ऊपर वालों की जवाबदेही फिक्स नहीं होगी कुछ नहीं होगा.
7: एक बिल्डिंग वो कलेप्स कर गई है और एग्जैक्ट फिगर बताना मुश्किल है कि 10 बच्चे हैं, 20 हैं, 5 हैं, परंतु बच्चे उसके अंदर हैं, इसमें कहीं वो नहीं है. अभी दो बच्चों को निकाल कर NDTRF और MCD और सभी पुलिस के डिपार्टमेंट हैं उनको लेके गए हैं, उनको अभी अस्पताल भेजा है और बच्चे अंदर से, बल्कि कुछ बच्चे कॉल भी कर रहे हैं अंदर से, और अभी बच्चे काफ़ी, ऐसा लगता है कि बच्चे अंदर भी हैं.
8: बहुत दुखद है कि दिल्ली में लगातार इस तरीके के हादसे हो रहे हैं. आज अभी जो हादसा हुआ है उसमें भी बहुत सारे जो बच्चे हैं वो दबे हुए हैं. अभी भी हमारी पहली चिंता ये है कि बच्चों को निकाला जाए, सेफ जगह पर पहुंचाया जाए, और इसके साथ साथ इस तरीके की घटनाएं आगे नहीं हो उसके लिए न्यायिक जांच बैठाई जाए. न्यायिक जांच लगातार हम मांग करते रहे हैं, चाहे यहाँ की बात हो या मालवीय नगर की बात हो या राजेंद्र नगर की बात हो या लक्ष्मी नगर की बात हो. इस तरीके के हादसों पे जब तक किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, इस तरीके के हादसे होते रहे.
0: Well, shifting our focus now, for the first time you're seeing the devastation on the Chinese side of the Nepal-China border. From the very epicenter of the deadly August 26 flash floods, these never-before-seen visuals show Guirong Immigration Post, once a key border facility before the floods, and what remains after a massive wall of rock, ice and mud engulfed it within minutes. And this next set of visuals show just how swiftly the floods transformed the Chinese side of the border. On top, the Geerong Immigration Centre standing intact at the Rasuvagaudi border, a key gateway between Nepal and China. But on the right is the same location after August 26 flash floods. The entire facility has been swept away, leaving behind only rock, mud and debris and the ravaged riverbed. The Chinese Immigration Centre at Rasuvagaudi has been reduced to a rubble after devastating floods and landslides. 31 people have been killed, 550 remain missing, 250 foreigners, 49 Indians on the Chinese side. Rescue operations underway.
9: Yeah, this is indeed a unique place. After the disaster, you just can't make out the border between Nepal and China. Behind me is the Nepalese flag, and now you see I'm standing here at the on the Chinese side. But where is the building? The massive building that was hosting a number of probably scores of Chinese officials, as well as hundreds of people trying to enter and exit China at the time, all went missing. Look at that. If you can just pan around, see the amount of destruction. This is the place the torrents came from that side and entered and destroyed whatever left. And of course, Nepal suffered very, very heavy damage. But on the Chinese side too, the damage is not insignificant. It is indeed, they have pressed hundreds of workers since August 27 to clear the area. But you can see the work is not over yet. This is KJM Verma, PTI, at the August 27 disaster site in Nepal-China border. A very sordid and bitter memories are etched in the memories of the entire world that saw this place collapsing like a pack of cards. On August 26, we have seen a torrent of mud, rocks, and a broken glacier coming on, and this is where we have not seen yet. Where that big building hosting immigration center for China. And a whole hundreds of people were waiting on both sides to enter the China or to leave China. And sadly, many of them perished. And sadly, many of them are Indians. Today, we have a stat from the Chinese side of this particular tragedy. That is 31 people killed, over 550 people remain missing, and out of that 250 people are foreigners, and at the same time we have 49 Indians missing so far on the Chinese side. This is KJM Verma for PTI from the location of the disaster of the August 26th.
0: All over, RSS run schools. Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari has backed an expansion of RSS schools. The entire plan, that's what he's backed, and setting a target of about 1,000 schools across the state. He's also called for nationalistic learning to be imparted and wants more such schools to come up across districts. The move has drawn sharp criticism from the opposition TMC, which alleges this is an attempt to saffronize education and introduce the RSS quote-unquote communal agenda into the curriculum. The party says it is totally against RSS run schools.
10: আমি চাই আগামী এক বছরের মধ্যে বিদ্যা ভারতীর বিদ্যা মন্দির তার সংখ্যা 1000-এ পৌঁছাক
11: আশীর্বাদ কা পাঠ পড়ানা ভি জরুরি হে আর हमारे बच्चे लोग के साथ उनका बात सुनना भी जरूरी है आजकल हम लोग जो देख रहे हैं स्पेशली रिसेंटली जो बच्चे लोग का आंदोलन हुआ उसमें हम लोग देखे कि बच्चे लोग को इस्तेमाल किया जा रहा है इसीलिए आज ये राष्ट्रवादी स्कूल होना बहुत जरूरी है
12: दिस इज एन एफर्ट टू सेफ्रोनाइज एजुकेशन एंड इंट्रोड्यूस आरएसएस communal agenda into educational curriculum. I'm totally opposed to this.
0: And not just Bengal, the push for the RSS

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो सुबह केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

मेरे पापा ने कहा, बोले बेटा तेरे को मैं कहानी सुनाता हूँ कि एक बहुत अच्छी बच्ची थी, परी थी, छह बहन भाई के बाद हुई थी वो, तीन भाई थे उसके, तीन बहनें थी उसके, 5 साल बाद वो हुई थी। उसके पापा शहर में चले गए, उसकी माँ पूरे दिन बकरियों का भेड़ों का जन्म करवाते करवाते वो थक गई थी, उसको होश रहा नहीं और वो बच्ची हुई, उसको ले जाके औरतों ने जमीन में गाड़ दी। फिर उसकी माँ को जैसे होश आया तो पूछा कि क्या हुआ था, मेरे बच्चा हुआ, रोया मैंने सुना था पर गया कहाँ। तो वो अपनी मौसी से, बहन से पूछा, उसकी बहन ने कहा कि तेरी लड़की हुई थी, उसको गाड़ दिया। वो उस बच्ची की माँ रो के उसकी बहन से पूछा कि मुझे वो एड्रेस बता, कहाँ वो जगह बता, कहाँ गाड़ा। तो रोने लगी, फिर उसकी बहन उसकी मदद करी। रात की 12-1 बजे रात को वो गई, और जब उसकी बहन ने कहा कि वो तो मर गई होगी, अब कहाँ जिंदा मिलेगी तेरे को, पर उसकी माँ बड़ी जिद्दीली थी बेटा। तो उसकी माँ ने कहा कि देख, 9 महीने मैंने पेट में रखा है, वो मर भी गई होगी तो एक बार उसको छू के तो देखूं, फील तो कर लूं। और मेरा दिल कहता है वो मुझे जिंदा मिलेगी, वो पुकार रही है मुझे।

पापा मुझे गले लगा के कहा कि बेटा वो बच्चा और कोई नहीं था, वो बच्चा आप थे, आपको ही गाड़ा था। तब मुझे पता चला कि मुझे गाड़ दिया था और मेरी माँ ने मुझे निकाला। अगर मेरी माँ कोशिश नहीं करती तो मैं जिंदा नहीं मिलती और आज मैं आपके सामने नहीं होती। दुआ मांगी थी ऊपर वाले से कि भगवान मेरे को ऐसी शक्ति देना कभी कि मैं जैसे जिंदा निकली हर बच्ची जिंदा रहे और आज के बाद किसी बच्चे की मौत नहीं हो इस तरीके से, बुरी तरीके से। और मैंने 14 साल की उम्र में आते आते ये लड़ाई मैंने बंद करी और ये बच्चियों को मारना और ये गाड़ना मैंने बंद कर दिया।

0: ऐसी गर्मी हो रही है ना, अरे बाप रे। शायद बरसात आएगी आज तो।
1: नमस्कार, मारो नाम गुलाबो सपेरा और मैं बताऊं था ना, मैं पद्मश्री हूँ। मैं बताऊँ आज की मारी दिनचर्या, मैं काय काय करूँ और मारो दिन कैसे स्टार्ट होवे वो बताऊँ मैं थाने आज।
0: माता के स्थान पे जो भी पूरे देवी देवता की तस्वीर है उनकी पूजा पाठ करके और दिन स्टार्ट हो जाता है। उन्हीं के साथ में खेलती कूदती रहती हूँ बच्चों के साथ। और ये खेल जो जल का लोटा रात भर जो मंदिर पे रखते हैं अपन, वो अपने पितृदेव और देवी देवताओं के नाम से हम लोग बाहर इसको डालते हैं ताकि उनको मिल जाए, उसके बाद हमारा दिन स्टार्ट हो जाता है। ये देवी देवताओं के नाम से हैं और ये हमारे पितृदेव के नाम से हैं। और ये सामने जो लक्ष्मी माता आती है उनके लिए हम लोग यहाँ, ये उनका स्थान क्लीन करते हैं कि माता आए यहाँ अंदर। मेरा नाम तो धनवंती है, असली नाम तो जो धनतेरस को जन्मी में, पर जो ये नाम है इसकी बड़ी स्टोरी है साथ में। मैं बहुत ज़्यादा एक बार बीमार हो गई थी। जब बीमार हो गई थी तो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि तुम्हारी बेटी तो अब नहीं रही, ख़त्म हो चुकी। मेरे पापा ने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता। बोले नहीं नहीं बाबा, तुम विश्वास नहीं कर रहे लेकिन मर चुकी। डॉक्टर से यहाँ से सीधे मेरे पापा मुझे वहाँ लेके गए पीर बाबा के, बाबा की जो दरगाह है उसमें मुझे लिटा दिया। एक घंटे बाद गुलाब का फूल आया अंदर से दरगाह से और मेरे सीने पे गिरा और मेरे हाथ पांव चलने लगे, सांसें चलने लगी। बोले बाबा आपकी बेटी या बेटा जो भी है बच्चा, वो शायद से ही वो रो रहा है। बाबा बोले मैं मौलाना साहब, मैं इस मुर्दा लड़की को लेकर आया था यहाँ पे और पीर बादशाह ने इसको ज़िंदा किया है, तो आज से ये पीर बाबा की बेटी है और मैं इसका नाम गुलाबी रखूँगा। पापा ने कहा कि धनवंती यहाँ ख़त्म हो गई है, वो तो मर गई। मैं आज से गुलाब को लेकर जा रहा हूँ बाबा आपके यहाँ से। और मेरे पापा मुझे गुलाब का नाम दे के और वहाँ से लेकर रवाना हो गए और इसको आज के बाद गुलाबी बोलेंगे। अजमेर की हूँ वैसे मैं रहने वाली और

अजमेर के आसपास वाले गांवों में, वहाँ ही रहते थे हम लोग। 6 महीने की हुई तो समाज के लोग यही कहते थे कि नहीं, इसको मरना है, इसको जिंदा कैसे रखेंगे, जिंदा रखेंगे तो ये हमारे समाज पे कलंक है, समाज के खिलाफ है ये रूल, तो जिंदा नहीं रहना चाहिए इसको। तो मेरे पापा डरते थे कि कहीं मेरी बच्ची को मार नहीं दे, तो मेरे पापा मुझे साथ लेके जाते थे गांव ढाणी में, सांपों को नचाने जाते थे, दिखाने जाते थे, तो साथ लेके जाते थे कि कोई मुझे मार नहीं दे। जब मेरी माँ पूछती शाम को कि 6 महीने की बच्ची आप इसको क्या खिलाते हैं, बोला औरतें जो सांपों को दूध पिलाता हो ना, वो बचा हुआ दूध इसके पिला देता हूँ। तो बोला सांपों का झूठा दूध, बोला हाँ रोज ही पिलाता हूँ मैं सांपों का झूठा दूध, पिला के इसका पेट भर जाता है बस। आरे!

बहुत अच्छा लगता है। ये पांचों पहाड़ियाँ ऐसा लगता है कि पहाड़ियों की गोद में बैठे हैं हम, पांचों पांडू बैठे हैं यहाँ पे। और बारिश के दिनों में तो इतना अच्छा लगता है ना हरियाली।

1981 की बात है, छुपके 20 औरतों के साथ में नाच रही थी बेन के ऊपर, और उधर से टूरिज्म डिपार्टमेंट का कोई लोग, हिम्मत सिंह जी और तृप्ति पांडे, वो आए घूमते घूमते, उन्होंने देखा कि ये लड़की बीन के ऊपर डांस कर रही है। सपेरों की तो बीन के ऊपर डांस करती नहीं है लड़कियाँ, और वो तो सिर्फ सांपों का नचाते हैं। पहला लड़की है जो मेरा डांस देखा, मेरा हाथ लगा के देखा तो बोले तेरे बदन में हड्डियाँ भी यही है नहीं, रबड़ की गुड़िया की जैसे उछल रही है तू, तो एकदम यूं। मैंने देखा, मैंने कहा मैडम क्या कह रही है। फिर मेरे चाचा से बात करी कि बोले तुम लोग जो यहाँ डांस कर रहे हो, ये शाम को करना वहाँ पे अंग्रेजों के सामने, वहाँ पे एक मंच है उसके ऊपर। फिर ये 1981 में ये मेरे को पहले बार मंच मिला। दो दिन मैंने डांस किया, तीसरे दिन मेला ख़त्म हो गया और समाज को पता चल गया कि ये लड़की तो तख्तों पर डांस करके आई है। समाज वालों ने कहा, अरे तख्तों पर डांस किया इसने, जहाँ अच्छी लड़कियाँ डांस नहीं करती डांस किया इसने, ऐसे करके मेरे पापा को समाज से बाहर, परमानेंट ही बाहर कर दिया। फिर बोला अब तो हम तेरे को नहीं रख सकते समाज में, अब तो तेरे को निकालना ही पड़ेगा। मेरे पापा को समाज से बाहर कर दिया, और पर मेरे पापा ने मुझे कुछ नहीं कहा। मेरे पापा ने इतना कहा कि ये तो बच्ची है, 7 साल की है अभी, बड़ी औरतें 20 औरतें साथ में थी, आप उन पर नहीं करोगे डंड मुंड, आदमी भी तो था साथ में, बीन बजा रहा था, डपली बजा रहा था। तो पंचों ने पता क्या कहा कि तेरी बेटी नृत्य नहीं करती तो हमारे ये लोग साथ नहीं जाते, हमारी औरतों को लालच नहीं उठता, ये काजल बिंदी के पैसों के चक्कर में ये इस लड़की को नृत्य करा रही थी, तो गलती सारी लड़की की है कि इसने नृत्य स्टार्ट किया, हमारे समाज में कोई बेटियां डांस नहीं करती तो इसने क्यों डांस स्टार्ट किया, ये नहीं कर सकते आज के बाद में। बोले या तो तेरी बेटी की मौत या समाज से बाहर। मेरे पापा ने कहा कि मैं समाज से बाहर निकल जाऊँगा, लेकिन मैं बेटी की मौत नहीं कर सकता, मार नहीं सकता इसको।

पापा गुजर गए थे फिर 85 में, अमेरिका जाने से एक रोज पहले ही गुजर गए थे। तो मेरे को उसी रात जाना था, मैं दिल्ली में थी, मेरे को वापस बुलाया, फिर मैं बेहोश पड़ी रही 2-3 घंटे। फिर मेरे को लगा कि मेरे पापा जैसे आके मुझे जगा रहे कि पापा के बोले बेटा उठ, तेरे को तो अमेरिका देश में जाना है, चीलगाड़ी में नहीं बैठना है क्या? मैंने कहा हाँ। तो उठ, आँख खुली तो मेरे पापा नहीं थे, पर मेरी माँ को मैंने कहा, मतलब माँ पापा आए थे अभी। बोले बेटा पापा कहाँ से आएंगे? मैंने कहाँ से आएंगे, अभी आके मुझे जगाया है पापा ने, मेरे पापा गए नहीं है कहीं पे भी, मेरे पापा मेरे पास ही है, मेरे पापा मुझे अमेरिका भेज रहे हैं। माँ ने कहा बोले नहीं बेटा 12 दिन होगा उसके बाद आपको जाना होगा। फिर मैं रोने लगी तो माँ क्या आप मेरे पापा मदद करते थे, आप मदद नहीं करोगे क्या, आपको मदद करनी है ना। तो मेरी माँ ने रोई, फिर माँ चुप हुई, फिर कहा बोले चलो ठीक है बेटा मैं मदद करती हूँ, गए तो तेरे पापा ही है, मैं तो नहीं गई ना, मैं जब तेरे को धरती माता के पेट से ला सकती हूँ तो क्या समाज से नहीं लड़ सकती क्या? पहले भी तो लड़ाई लड़ी मैंने, अब बाकी लड़ाई मैं लड़ूँगी, तेरे पापा ने लड़ाई लड़ी तेरे जन्म से लेकर 81 से लेकर 85 तक, अब मैं लड़ूँगी आगे, तू जा। फिर मेरी माँ ने आंसू पहुँच लिए, कहा कि तू जा मैं लड़ूँगी कोई बात नहीं। फिर जब मैं वापस आई थी तब 2 महीने बाद तब फिर मेरी माँ को मैंने गले लगाया और माँ बहुत खुश भी हुई। मैंने कहा माँ देख आज मैं गई तो मेरे पापा का नाम अमर हो गया, मेरे पापा का नाम छप रहा है, आज समाज का नाम हुआ, देश का नाम हुआ, मैं नहीं जाती तो गुमराह ही रह जाती, मेरे जो पापा का सपना था वो आधा अधूरा रह जाता। तो बस ये अमेरिका से आने के बाद की फोटो है।

किसी कोई सरदार जी थे उनका, कि गुलाबू बोल रहे हैं? मैंने कहा हाँ सर मैं बोल रही हूँ। बोले आपको पद्मश्री मिल रही है, आपका नाम नॉमिनेट हुआ है और आपको पद्मश्री मिल रही है। मैंने कहा क्या? 25 जनवरी को फ़ोन आया था मेरे पास में सुबह सुबह। जिंदगी का जो मेरी मेहनत थी उस पे उन्होंने एक मोहर लगा दी और वो एक मान्यता मिल गई है मुझे। उसको आप चाहे उसको कुछ भी मान ले, पर मेरे को वो जो मिला है ना पद्मश्री, मैं यहाँ एंड नहीं किया उसको। मैंने कहा कि पद्मश्री मिली है मेरे को, एक कदम बढ़ने का मौका मिला है आगे, तो मेरे को और आगे बढ़ना है, और आगे जाना है। मेरा नाम हो गया था 85 में। उसके बाद मैं तम्बू डेरे में रही, मैंने मेरी बेटी मेरी शादी हो गई थी 86 में। तो उसके बाद फिर मैंने 91 में वो ज़मीन खरीदी। कभी 10,000 आए तो बनाया, कभी 5,000 आए तो बनाया, कभी 20,000 आए तो बनाया, ऐसे कर करके वो बना हुआ है। तो इस तरीके से वो घर बना हुआ है मेरा टुकड़ों में, उसमें सब कुछ फोटो हैं, सब यादें हैं, सब कुछ। क्या कही तो मैं अभी मेरी बेटियों की शादी करी ना, तो फिर मैं यहाँ आके रही हूँ। मार्च से हैं हम यहाँ, अभी तो कंप्लीट नहीं है ये घर, ये मेरा ड्रीम हाउस है। बच्चों को मैंने अपने गिफ्ट बना के दिया है, लेकिन मेरा तो झोपड़ा वही है, मैं तो वहीं रहूँगी, ये मेरे बच्चों के लिए है। तो वहाँ चलेंगे आप?

रोड पे नाचती थी हमेशा, और जैसे यहाँ पे ये इस रोड पे बहुत डांस किया है मैंने। एक तो धूप में, मिट्टी में, कंकरों पे, धूल में नाचती थी, और एक पहले बार मंच मिला और ऐसा लग रहा था कि जैसे पब्लिक जो बैठी है वो एक भगवान का रूप लेके बैठी है, और स्टेज है जो एक जैसे मंदिर है। जो रोड पे जो फुटपाथ पे मैं नाच करती हूँ और नृत्य करती हूँ, तो पैसे फेंकते हैं, कोई पैसे देते हैं, और ये लोग मेरे को ताली बजा के भगा रहे हैं, या फिर मेरे समझ में नहीं आ रही ताली बजती क्यों। तो पहले बार तालियों की गिड़गिड़ाहट सुनी तो वो लग रहा था कि शायद मुझे स्टेज से नीचे उतर रहे हैं, लेकिन मुझे तो अच्छा लग रहा था। तो मुझे पैसों का लालच नहीं था जितना मेरे को ऑडियंस का लालच था, जितना मुझे पब्लिक का लालच थी, जितने मुझे लोग मान सम्मान तालियां बजा के इतना प्यार दे रहे थे उसकी भूखी थी।

खजाना दिखाती हूँ आपको, जो मेरी जिंदगी भर की मेहनत है वो खजाना आप देखिए। आइए मेरे साहब हैं ये, मैं हूँ। बहुत शादी से पहले की फोटो है ये, जब सगाई हुई थी हमारी, 83 की फोटो है ये। और ये मेरी परिवार है मेरा पूरा। ये डेनमार्क वहाँ प्रोग्राम कर रहे थे हम लोग, वहाँ पे वहाँ की फोटो है ये। वो ऊपर वाली जो वो 92 की फोटो है, ये बहुत पुरानी फोटो है। मैं छोटी थी, मेरे ये भाई बहन है, ये मेरी मामी है मेरे माँ की भाभी, और ये उनके बच्चे हैं परिवार में। उनसे मिलने के लिए गई थी, तो ये जब की फ़ोटो है। हम लोग ऐसे ही टेंट में रहते हैं, ये वाले टेंट है हमारे। और ये मेरी बड़ी बहन है, हमारे लिए खाना बना रही है, और हम लोग यहाँ मिलने के लिए गए थे। तो ये हमारा यही ट्रेडिशनल है, इसी तरीके से हम लोग रहते हैं। ये फ्रांस की है, 96 की फ़ोटो है। ये हमारी पूरी टीम है, फ्रेंच टीम। फेस्टिवल था वहाँ पे अमेरिका, उसमें फ्रांस में ही, और वहाँ पे इन्हीं का प्रोग्राम था और मेरा भी प्रोग्राम था, और वहाँ पे हम लोगों ने ये साथ मिलकर डांस किया था। ये है फोटो, हाँ 83 की है, 83 की। जैसलमेर, यहाँ से फेमस हुई थी। तो ये ड्रेस पहन के मैंने पहली बार वहाँ पे डांस किया था 83 में। हम लोग यहाँ रहते हैं, ये शास्त्री नगर पहले रहते थे यहाँ पे, जहाँ से मैं इस जगह से अमेरिका गई, यहाँ से इस देरों में से ये सफ़र मेरा यहाँ से स्टार्ट हुआ।

झांका तो हो गया, मैंने पुराना सफ़र आपको दिखाया और पुरानी यादें ताज़ा कराई। तो अब चलते हैं वापस स्वर्ण फार्म हाउस और वहाँ पे थोड़ा डांस करें।

रोटी सब्जी ओ रोटी रोटी रोटी रोटी रोटी रोटी। आज हमारे खाने में बना है ये तो दही और चीनी है, ये तो दही और चीनी, और ये मेरे साकार की सब्जी है जो तोरू की सब्जी है। इसमें सिर्फ हरी मिर्ची डाली है और हल्दी डाली है और टमाटर है, और ये मेरे सिंगोड़े की रोटी है, और ये खीरा है।

कांकण हो गई, इसको कांकण कहते हैं, इसको पुंछिया कहते हैं, जो ये बड़ा वाला जो फुंदी होती है इसको बाजूबंद कहते हैं। तो पता नहीं ऊपर वाले का कोई ऑर्डर ही है कि मैं पहले ही एडवांस बना के रखूँ, क्योंकि मैंने 81 में तो स्टार्ट ही कर दिया था, ये 79 में मैंने बनाई थी ये ड्रेस। बाबा रामदेव जा रहे थे तब मैंने पापा से पैसे मांगे और हम लोग सारे जाके ये काली ड्रेस बना के इसको अलग अलग कलर डाल के सतरंगी ड्रेस बनाई और ये मेरे प्रोग्राम में काम आई। बाबा की गई थी मैं पहन के रामदेव राम। मैं बहुत छोटी थी, पापा की बहुत लाडली थी, तो मैंने एक बार पापा से पूछा था, मैंने कहा पापा मैं ही आपकी लाडली क्यों हूँ, मुझे आप इतना प्यार से क्यों रखते हैं। तो मेरे पापा ने कहा तू मेरी स्पेशल बेटी है, और पता है तू 3 भाइयों के बाद तू हुई और 5 साल बाद हुई, और माता रानी से दुआ मांगते मांगते तेरी माँ ने बहुत मांगा माता रानी से, फिर तू हुई। तो मेरे को पापा ऐसे टाल देते थे हर बार।

पाँच छः साल की होगी, तो एक बार मेरे सामने एक बच्ची हुई थी, मैं खुद एक खड़े खड़े देख रही थी वहाँ पे, लड़की हुई थी, तंबू में डेरों में तो होते थे हमारे, तो औरतें पर्दे करके जन्माया और मैं वहीं खड़ी थी।

बताई मैंने पूरी सारी मारी जितनी कहानी दिन भर की सारी चरिया पूरा होयो। नमस्कार सबने, गुड नाइट, बाय बाय।

0: And in the latest update in the building collapse in Southwest Delhi, we learned that four people have lost their life. Many fear trapped under the debris. Rescue operations underway. The incident is reported near Satyaniketan in Southwest Delhi, with the fire department receiving an alert at around 1:30 p.m. this afternoon. Several people are fear trapped under the debris. Fire department teams have reached the spot and have begun search and rescue operations. Rescuers are now combing through the rubble to locate anyone who may be trapped. The extent of the collapse, possible casualties, and the exact number of people trapped are yet to be confirmed. Prime Minister condoled the loss of lives and said that the rescue efforts are underway with full swing. Delhi Chief Minister Rekha Gupta has expressed concern over the collapse, stating every possible effort is being made to rescue those trapped. Home Minister Amit Shah tweeted about the incident and assured all possible assistance.
1: बच्चों की जान है और कोई भी कल्प्रिट छोड़ा नहीं जाएगा, खास करके ये जिसका मकान है, जो यहाँ पे बिल्डिंग छोड़ के भाग गया, जो कि अंदर कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहा था, बेसमेंट में खुदाई कर रहा था, और जिसकी वजह से जो पिलर है वो डिसमेंटल हुआ और बिल्डिंग पूरी गिर गई, तो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी हो, और जिसके कारण से ये हादसा हुआ है सबको सजा भुगतनी।
2: एक कमेटी बना दी है, कमेटी इसकी जांच पड़ताल करेगी और जैसी उसकी रिपोर्ट आएगी, जो लोग भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मकान मालिक के खिलाफ FIR दर्ज हो गई है और शायद उनको गिरफ्तार भी

0: was trapped. Home Minister Amit Shah tweeted about the incident and assured all possible assistance.
1: बच्चों की जान है और कोई भी कल्प्रिट छोड़ा नहीं जाएगा, खास करके ये जिसका मकान है, जो यहाँ पे बिल्डिंग छोड़ के भाग गया, जो कि अंदर कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहा था, बेसमेंट में खुदाई कर रहा था और जिसकी वजह से जो पिलर है वो डिसमेंटल हुआ और बिल्डिंग पूरी गिर गई, तो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी हो और जिसके कारण से ये हादसा हुआ है, सबको सजा भुगतनी।
2: एक कमेटी बना दी है, कमेटी इसकी जांच पड़ताल करेगी और जैसे ही उसकी रिपोर्ट आएगी, जो लोग भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मकान मालिक के खिलाफ FIR दर्ज हो गई है और शायद उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है।
3: तो चाहते हैं ये बच्चे उसमें बच जाएं, पहले रेस्क्यू होने दीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट है, सभी जाए जाएं, आपके इस समय सभी जाए जाएं, बहुत कमियां हैं सिस्टम में, बहुत कमियां मैं मानता हूं, लेकिन पहले अभी रेस्क्यू होने दीजिए। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं।
4: अपने सभी कॉलेजेस को कह दिया है, वो एसेस कर रहे हैं कि कितने बच्चे यहाँ रहते हैं और जितने बच्चे भी यहाँ रहते हैं हम उनको वापस अपने कॉलेजेस में बुला रहे हैं। अंदर से फोन भी आ रहा है, अंदर से एक आध वीडियो कॉल भी आई है बच्चे की, फोन भी आ रहे हैं। थोड़ा सा उससे लगता है कि बच्चे ठीक ठाक निकल आए सबसे पहले, दैट इज द प्राइम कंसर्न।
5: DRF की अभी दो टीमें वहाँ पर काम कर रही हैं, जिसमें करीब 70 लोग हैं और वहाँ पर हम दो साइट्स पे जहाँ पर मैक्सिमम विक्टिम को निकालने, लाइव विक्टिम को निकालने की संभावना, उसको आइडेंटिफाई करके वहाँ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा NDRF की दो टीमें हमने रिजर्व रखी हुई हैं, इनकेस इनको रिप्लेस करना पड़े, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन 24 घंटा चलता है, इसको रोका नहीं जाता है। तो अगर ये टीम को हमको रिप्लेस करना पड़ेगा, दूसरी टीम फिर वहाँ पर टेक ओवर करके उसी रेस्क्यू ऑपरेशन को कंटिन्यू करेगी। और दो एडिशनल टीम बटालियन हेडक्वार्टर द्वारका में, वहाँ पर हमने स्टैंड बाय रखा हुआ है, ताकि अगर रिप्लेसमेंट की और टीम की ज़रूरत होगी तो 6 टीम हमने इसके लिए या मार्क किया हुआ है।
0: NDTV continues to report from the mishap site in Delhi's Satyaniketan. My colleague Reet Kaur Sani has been reporting from Ground Zero. Let's take a look at these reports.
6: Well, I'm currently present in a hostel inside of Satyaniketan. This is just a couple of meters away from where the building collapsed. And you can see that the entire area does not have any width at all, which means that, you know, if one has to enter and exit from this area, there is not much space that they have. The entire area is such that at one point of time, only me or my camera person can walk through these stairs. These stairs are so narrow that tomorrow, God forbid, if such an incident occurs where there is a need for students to escape, they will not be able to do so. Now, what's extremely important to understand is that this lies in an area where many students from different parts of the country come over here to study. Delhi University is one of the most revered universities, one of the most sought after universities of the entire nation, which is why students from all walks of life from across the country and even from across the globe come over here to study. Now, this is one entry and exit that this paying guest accommodation over here in specific has, which means that tomorrow, God forbid, if something happens, people will have to push each other to come out of this area. You can see that this is what the building is looking like. Only one entry and exit point. I was trying to talk to some of the hostelers, some of the girls who are staying over here, but they are now a little bit scared. They've been told that they've been given strict instructions by their warden to not speak to media. Many students have come up to me and said that, you know, the specific hostel that fell down, they had asked their friends to not stay in that specific hostel so as to ensure that something like this does not occur. Now, the big question, like I said earlier also, was that how many tragedies is it going to take for us to realize that human life comes ahead of anything. It comes ahead of any economic gains, any cost-cutting measures at all. Well, I'm currently present at the Satyaniketan site, and over here you can see that the rescue operations are underway in full swing. The authorities are present on Ground Zero trying to, in fact, rescue all the people who are buried underneath the debris. Remember that this is a couple of hours into the operation. It's been going since 2 p.m. this afternoon. You can see that they are trying to, in fact, evacuate the entire area. They're trying to coordinate off to ensure that people are not present over here. This is what it's looking like on Ground Zero. The bulldozers are right there, present there. this is also operational in the operations taking place. We just spoke to the Delhi Chief Minister Rekha Gupta, and she was also talking about how as many as 11 people have been rescued so far and the operations are underway. She's also talked about fixing accountability. Remember that fixing accountability remains the most important part in this incident. This incident is spanning a bunch of hours, but its impact will be for a lifetime for those who are impacted by it. There are

0: And in the latest update in the building collapse in Southwest Delhi, we learned that four people have lost their life. Many fear trapped under the debris. Rescue operations underway. The incident is reported near Satyaniketan in Southwest Delhi, with the fire department receiving an alert at around 1:30 p.m. this afternoon. Several people are fear trapped under the debris. Fire department teams have reached the spot and have begun search and rescue operations. Rescuers are now combing through the rubble to locate anyone who may be trapped. The extent of the collapse, possible casualties, and the exact number of people trapped are yet to be confirmed. Prime Minister condoled the loss of lives and said that the rescue efforts are underway with full swing. Delhi Chief Minister Rekha Gupta has expressed concern over the collapse, stating every possible effort is being made to rescue those trapped. Home Minister Amit Shah tweeted about the incident and assured all possible assistance.
1: बच्चों की जान है और कोई भी कल्प्रिट छोड़ा नहीं जाएगा, खास करके ये जिसका मकान है, जो यहाँ पे बिल्डिंग छोड़ के भाग गया, जो कि अंदर कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहा था, बेसमेंट में खुदाई कर रहा था, और जिसकी वजह से जो पिलर है वो डिसमेंटल हुआ और बिल्डिंग पूरी गिर गई, तो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी हो, और जिसके कारण से ये हादसा हुआ है सबको सजा भुगतनी।
2: एक कमेटी बना दी है, कमेटी इसकी जांच पड़ताल करेगी और जैसी उसकी रिपोर्ट आएगी, जो लोग भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, मकान मालिक

0: And in the latest update in the building collapse in Southwest Delhi, we learned that four people have lost their life. Many fear trapped under the debris. Rescue operations underway. The incident is reported near Satyaniketan in Southwest Delhi, with the fire department receiving an alert at around 1:30 p.m. this afternoon. Several people are fear trapped under the debris. Fire department teams have reached the spot and have begun search and rescue operations. Rescuers are now combing through the rubble to locate anyone who may be trapped. The extent of the collapse, possible casualties, and the exact number of people trapped are yet to be confirmed. Prime Minister condoled the loss of lives and said that the rescue efforts are underway with full swing. Delhi Chief Minister Rekha Gupta has expressed concern over the collapse, stating every possible effort is being made to rescue those trapped. Home Minister Amit Shah tweeted about the incident and assured all possible assistance.
1: बच्चों की जान है और कोई भी कल्प्रिट छोड़ा नहीं जाएगा, खास करके ये जिसका मकान है, जो यहाँ पे बिल्डिंग छोड़ के भाग गया, जो कि अंदर कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहा था, बेसमेंट में खुदाई कर रहा था, और जिसकी वजह से जो पिलर है वो डिसमेंटल हुआ और बिल्डिंग पूरी गिर गई, तो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी हो, और जिसके कारण से ये हादसा हुआ है सबको सजा भुगतनी।
2: एक कमेटी बना दी है, कमेटी इसकी जांच पड़ताल करेगी और जैसी उसकी रिपोर्ट आएगी, जो लोग भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मकान मालिक के खिलाफ FIR दर्ज हो गई है और शायद उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है।
3: तो चाहते हैं कि बच्चे उसमें बच जाएं, पहले रेस्क्यू होने दीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट है, सभी जायज आपके इस समय सभी जायज हैं, बहुत कमियां हैं सिस्टम में, बहुत कमियां मैं मानता हूं, लेकिन पहले अभी रेस्क्यू होने दीजिए। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं।
4: अपने सभी कॉलेजेस को कह दिया है, वो एसेस कर रहे हैं कि कितने बच्चे यहाँ रहते हैं, और जितने बच्चे भी यहाँ रहते हैं हम उनको वापस अपने कॉलेजेस में बुला रहे हैं। अंदर से फोन भी आ रहा है, अंदर से एक आध वीडियो कॉल भी आई है बच्चे की, फोन भी आ रहे हैं। थोड़ा सा उससे लगता है कि बच्चे ठीक ठाक निकल आए, सबसे पहले दैट इज द प्राइम कंसर्न।
5: NDRF की अभी दो टीमें वहां पर काम कर रही है।

0: And in the latest update in the building collapse in Southwest Delhi, we learned that four people have lost their life. Many fear trapped under the debris. Rescue operations underway. The incident is reported near Satyaniketan in Southwest Delhi, with the fire department receiving an alert at around 1:30 p.m. this afternoon. Several people are fear trapped under the debris. Fire department teams have reached the spot and have begun search and rescue operations. Rescuers are now combing through the rubble to locate anyone who may be trapped. The extent of the collapse, possible casualties, and the exact number of people trapped are yet to be confirmed. Prime Minister condoled the loss of lives and said that the rescue efforts are underway with full swing. Delhi Chief Minister Rekha Gupta has expressed concern over the collapse, stating every possible effort is being made to rescue those trapped. Home Minister Amit Shah tweeted about the incident and assured all possible assistance.
1: बच्चों की जान है और कोई भी कल्प्रिट छोड़ा नहीं जाएगा, खास करके ये जिसका मकान है, जो यहाँ पे बिल्डिंग छोड़ के भाग गया, जो कि अंदर कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहा था, बेसमेंट में खुदाई कर रहा था, और जिसकी वजह से जो पिलर है वो डिसमेंटल हुआ और बिल्डिंग पूरी गिर गई, तो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी हो, और जिसके कारण से ये हादसा हुआ है सबको सजा भुगतनी।
2: एक कमेटी बना दी है, कमेटी इसकी जांच पड़ताल करेगी और जैसी उसकी रिपोर्ट आएगी, जो लोग भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मकान मालिक के खिलाफ FIR दर्ज हो गई है और शायद उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है।
3: तो चाहते हैं ये बच्चे उसमें बच जाएं, पहले रेस्क्यू होने दीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट है, सभी जायज आपके इस समय सभी जायज हैं, बहुत कमियां हैं सिस्टम में, बहुत कमियां मैं मानता हूं, लेकिन पहले अभी रेस्क्यू होने दीजिए। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं।
4: अपने सभी कॉलेजेस को कह दिया है, वो एसेस कर रहे हैं कि कितने बच्चे यहाँ रहते हैं, और जितने बच्चे भी यहाँ रहते हैं हम उनको वापस अपने कॉलेजेस में बुला रहे हैं। अंदर से फोन भी आ रहा है, अंदर से एक आध वीडियो कॉल भी आई है, बच्चे की फोन भी आ रहे हैं। थोड़ा सा उससे लगता है कि बच्चे ठीक ठाक निकल आए, सबसे पहले दैट इज द प्राइम कंसर्न।
5: NDRF की अभी दो टीमें वहाँ पर काम कर रही हैं, जिसमें करीब 70 लोग हैं, और वहाँ पर हम दो साइट्स पे जहाँ पर मैक्सिमम विक्टिम को निकालने, लाइव विक्टिम को निकालने की संभावना, उसको आइडेंटिफाई करके वहाँ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा NDRF की दो टीमें हमने रिजर्व रखी हुई हैं, इनकेस इनको रिप्लेस करना पड़े, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन 24 घंटा चलता है, इसको रोका नहीं जाता है। तो अगर ये टीम को हमको रिप्लेस करना पड़ेगा, दूसरी टीम फिर वहाँ पर टेक ओवर करके उसी रेस्क्यू ऑपरेशन को कंटिन्यू करेगी। और दो एडिशनल टीम बटालियन हेडक्वार्टर द्वारका में, वहाँ पर हमने स्टैंड बाय रखा हुआ है, ताकि अगर रिप्लेसमेंट की और टीम की ज़रूरत होगी तो 6 टीम हमने इसके लिए या मार्क किया हुआ है।

0: And in the latest update in the building collapse in Southwest Delhi, we learned that four people have lost their life. Many fear trapped under the debris. Rescue operations underway. The incident is reported near Satyaniketan in Southwest Delhi, with the fire department receiving an alert at around 1:30 p.m. this afternoon. Several people are fear trapped under the debris. Fire department teams have reached the spot and have begun search and rescue operations. Rescuers are now combing through the rubble to locate anyone who may be trapped. The extent of the collapse, possible casualties, and the exact number of people trapped are yet to be confirmed. Prime Minister condoled the loss of lives and said that the rescue efforts are underway with full swing. Delhi Chief Minister Rekha Gupta has expressed concern over the collapse, stating every possible effort is being made to rescue those trapped. Home Minister Amit Shah tweeted about the incident and assured all possible assistance.
1: बच्चों की जान है और कोई भी कल्पित छोड़ा नहीं जाएगा, खास करके ये जिसका मकान है, जो यहाँ पे बिल्डिंग छोड़ के भाग गया, जो कि अंदर कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहा था, बेसमेंट में खुदाई कर रहा था, और जिसकी वजह से जो पिलर है वो डिसमेंटल हुआ और बिल्डिंग पूरी गिर गई, तो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी हो, और जिसके कारण से ये हादसा हुआ है सबको सजा भुगतनी।
2: एक कमेटी बना दी है, कमेटी इसकी जांच पड़ताल करेगी और जैसे ही उसकी रिपोर्ट आएगी, जो लोग भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मकान मालिक के खिलाफ FIR दर्ज हो गई है और शायद उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है।
3: तो चाहते हैं कि बच्चे उसमें बच जाएं, पहले रेस्क्यू होने दीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट है, सभी जायज आपके इस समय सभी जायज हैं, बहुत कमियां हैं सिस्टम में, बहुत कमियां मैं मानता हूं, लेकिन पहले अभी रेस्क्यू होने दीजिए। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं।
4: अपने सभी कॉलेजेस को कह दिया है, वो एसेस कर रहे हैं कि कितने बच्चे यहाँ रहते हैं, और जितने बच्चे भी यहाँ रहते हैं हम उनको वापस अपने कॉलेजेस में बुला रहे हैं। अंदर से फोन भी आ रहा है, अंदर से एक आध वीडियो कॉल भी आई है, बच्चे की फोन भी आ रहे हैं। थोड़ा सा उससे लगता है कि बच्चे ठीक ठाक निकल आए, सबसे पहले दैट इज द प्राइम कंसर्न।
5: NDRF की अभी दो टीमें वहाँ पर काम कर रही हैं, जिसमें करीब 70 लोग हैं, और वहाँ पर हम दो साइट्स पे जहाँ पर मैक्सिमम विक्टिम को निकालने, लाइव विक्टिम को निकालने की संभावना, उसको आइडेंटिफाई करके वहाँ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा NDRF की दो टीमें हमने रिजर्व रखी हुई हैं, इनकेस इनको रिप्लेस करना पड़े, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन 24 घंटा चलता है, इसको रोका नहीं जाता है। तो अगर ये टीम को हमको रिप्लेस करना पड़ेगा, दूसरी टीम फिर वहाँ पर टेक ओवर करके उसी रेस्क्यू ऑपरेशन को कंटिन्यू करेगी। और दो एडिशनल टीम बटालियन हेडक्वार्टर द्वारका में, वहाँ पर हमने स्टैंड बाय रखा हुआ है, ताकि अगर रिप्लेसमेंट की और टीम की ज़रूरत होगी तो 6 टीम हमने इसके लिए यह मार्क किया हुआ है।
0: NDTV continues to report from the mishap site in Delhi's Satyaniketan.

0: polls show strong support for her, allowing a woman to take the throne. Yet the government is sticking to the male-only line. The compromise of bringing back male descendants from former imperial branches may satisfy conservatives. But for those demanding gender-equal succession, it leaves the biggest question untouched. Can Japan preserve its ancient monarchy without confronting its deeply entrenched male-only succession rule? Bureau Report, NDTV World.
1: The Satyaniketan building collapse has now turned into a political flashpoint. Aam Aadmi Party and Congress are training guns on the BJP government. Demanding accountability from the state government, AAP is now alleging that corruption in MCD building department is fueling repeat collapses in the national capital. Saurabh Bharadwaj claims that the system has failed to change despite repeated building safety audits. Congress is also targeting the government over the collapse, with MP Dipinder Hooda questioning the response of the civic and local authorities. He claims that students themselves rescued three children while police and ambulances arrived late on the spot.
2: जो भी समस्याएं हैं, चाहे मकान गिरने का हो, चाहे कुछ भी गिरने का हो, वो हमारी सरकार जो है चिंता में है. आपको पता है कि जहां जिस कार्यक्रम में आए वहां रेखा गुप्ता जी नहीं आई, वो दिन रात वहीं स्पॉट पर जो है पड़ी हुई है. और हमारा काम होता है, ये जो पार्टी विथ अ डिफरेंस है भारतीय जनता पार्टी, हम काम करके दिखाते हैं. हमको नेतागिरी से बहुत मतलब नहीं है.
3: जी, काफ़ी दुखद है. दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं और छोटे बच्चे जो है दबे हुए. हमारा यही है कि बच्चों को बचाया जा सके और एक एक जान जो है वो कीमती है, वो बचे, ये बहुत ज़रूरी है.
4: भारतीय राजनीति में अगर कोई लुटेरा रहा है या राजनीतिक लुटेरे के तौर पे लोग प्रसिद्ध हैं, वो आम आदमी पार्टी के लोग हैं. और इस लूट की वजह से उनके बड़े बड़े नेता अरविंद केजरीवाल से लेके सिसोदिया से लेके तमाम लोग जेल गए हैं. इस विषय पे अगर सौरभ भारद्वाज राजनीति कर रहे हैं तो वो करें राजनीति, लेकिन हमारी प्रायोरिटी है कि वहाँ से बच्चे को निकाला जाए, जो बच्चे उस मलबे में फंसे हुए हैं.

0: Party and Congress are training guns on the BJP government. Demanding accountability from the state government, AAP is now alleging that corruption in MCD building department is fueling repeat collapses in the national capital. Saurabh Bharadwaj claims that the system has failed to change despite repeated building safety audits. Congress is also targeting the government over the collapse, with MP Dipinder Hooda questioning the response of the civic and local authorities. He claims that students themselves rescued three children while police and ambulances arrived late on the spot.
1: जो भी समस्याएं हैं, चाहे मकान गिरने का हो, चाहे कुछ भी गिरने का हो, वो हमारी सरकार जो है चिंता में है। आपको पता है कि जहां जिस कार्यक्रम में आए वहां रेखा गुप्ता जी नहीं आई, वो दिन रात वहीं स्पॉट पर जो है पड़ी हुई है। और हमारा काम होता है, ये जो पार्टी विथ डिफरेंस है भारतीय जनता पार्टी, हम काम करके दिखाते हैं, हमको नेतागिरी से बहुत मतलब नहीं।
2: जी, काफ़ी दुखद है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं और छोटे बच्चे जो है दबे हुए। हमारा यही है कि बच्चों को बचाया जा सके और एक एक जान जो है वो कीमती है, वो बचे, ये बहुत ज़रूरी है।
3: भारतीय राजनीति में अगर कोई लुटेरा रहा है या राजनीतिक लुटेरे के तौर पे लोग प्रसिद्ध हैं, वो आम आदमी पार्टी के लोग हैं। और इस लूट की वजह से उनके बड़े बड़े नेता अरविंद केजरीवाल से लेके सिसोदिया से लेके तमाम लोग जेल गए हैं। इस विषय पे अगर सौरभ भारद्वाज राजनीति कर रहे हैं तो वो करें राजनीति, लेकिन हमारी प्रायोरिटी है कि वहाँ से बच्चे को निकाला जाए, जो बच्चे उस मलबे में फंसे हुए हैं।

0: building safety audits. Congress is also targeting the government over the collapse, with MP Dipinder Hooda questioning the response of the civic and local authorities. He claims that students themselves rescued three children while police and ambulances arrived late on the spot.
1: जो भी समस्याएं हैं, चाहे मकान गिरने का हो, चाहे कुछ भी गिरने का हो, वो हमारी सरकार जो है चिंता में है. आपको पता है कि जहां जिस कार्यक्रम में आए वहां रेखा गुप्ता जी नहीं आई, वो दिन रात वहीं स्पॉट पर जो है पड़ी हुई है. और हमारा काम होता है, ये जो पार्टी विथ अ डिफरेंस है भारतीय जनता पार्टी, हम काम करके दिखाते हैं. हमको नेतागिरी से बहुत मतलब नहीं होता.
2: जी, काफ़ी दुखद है. दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं और छोटे बच्चे जो है दबे हुए. हमारे यही है कि बच्चों को बचाया जा सके और एक एक जान जो है वो कीमती है, वो बचे, ये बहुत ज़रूरी है.
3: भारतीय राजनीति में अगर कोई लुटेरा रहा है या राजनीतिक लुटेरे के तौर पे लोग प्रसिद्ध हैं, वो आम आदमी पार्टी के लोग हैं. और इस लूट की वजह से उनके बड़े बड़े नेता अरविंद केजरीवाल से लेके सिसोदिया से लेके तमाम लोग जेल गए हैं. इस विषय पे अगर सौरभ भारद्वाज राजनीति कर रहे हैं तो वो करें राजनीति, लेकिन हमारी प्रायोरिटी है कि वहाँ से बच्चे को निकाला जाए, जो बच्चे उस मलबे में फंसे हुए हैं.

0: And in the latest update in the building collapse in Southwest Delhi, we learned that four people have lost their life. Many fear trapped under the debris. Rescue operations underway. The incident is reported near Satyaniketan in Southwest Delhi, with the fire department receiving an alert at around 1:30 p.m. this afternoon. Several people are fear trapped under the debris. Fire department teams have reached the spot and have begun search and rescue operations. Rescuers are now combing through the rubble to locate anyone who may be trapped. The extent of the collapse, possible casualties, and the exact number of people trapped are yet to be confirmed. Prime Minister condoled the loss of lives and said that the rescue efforts are underway with full swing. Delhi Chief Minister Rekha Gupta has expressed concern over the collapse, stating every possible effort is being made to rescue those trapped. Home Minister Amit Shah tweeted about the incident and assured all possible assistance.
1: बच्चों की जान है और कोई भी कल्प्रिट छोड़ा नहीं जाएगा, खास करके ये जिसका मकान है, जो यहाँ पे बिल्डिंग छोड़ के भाग गया, जो कि अंदर कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहा था, बेसमेंट में खुदाई कर रहा था, और जिसकी वजह से जो पिलर है वो डिसमेंटल हुआ और बिल्डिंग पूरी गिर गई, तो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी हो, और जिसके कारण से ये हादसा हुआ है सबको सजा भुगतनी।
2: एक कमेटी बना दी है, कमेटी इसकी जांच पड़ताल करेगी और जैसी उसकी रिपोर्ट आएगी, जो लोग भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मकान मालिक के खिलाफ FIR दर्ज हो गई है और शायद उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है।
3: तो चाहते हैं ये बच्चे उसमें बच जाएं, पहले रेस्क्यू होने दीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट है, सभी जायज हैं आपके, इस समय सभी जायज हैं, बहुत कमियां हैं सिस्टम में, बहुत कमियां मैं मानता हूं, लेकिन पहले अभी रेस्क्यू होने दीजिए। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं।
4: अपने सभी कॉलेजेस को कह दिया है, वो एसेस कर रहे हैं कि कितने बच्चे यहाँ रहते हैं, और जितने बच्चे भी यहाँ रहते हैं हम उनको वापस अपने कॉलेजेस में बुला रहे हैं। अंदर से फोन भी आ रहा है, अंदर से एक आध वीडियो कॉल भी आई है, बच्चे की फोन भी आ रहे हैं। थोड़ा सा उससे लगता है कि बच्चे ठीक ठाक निकल आए, सबसे पहले दैट इज द प्राइम कंसर्न।
5: NDRF की अभी दो टीमें वहाँ पर काम कर रही हैं, जिसमें करीब 70 लोग हैं, और वहाँ पर हम दो साइट्स पे जहाँ पर मैक्सिमम विक्टिम को निकालने, लाइव विक्टिम को निकालने की संभावना, उसको आइडेंटिफाई करके वहाँ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा NDRF की दो टीमें हमने रिजर्व रखी हुई हैं, इनकेस इनको रिप्लेस करना पड़े, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन 24 घंटा चलता है, इसको रोका नहीं जाता है। तो अगर ये टीम को हमको रिप्लेस करना पड़ेगा, दूसरी टीम फिर वहाँ पर टेक ओवर करके उसी रेस्क्यू ऑपरेशन को कंटिन्यू करेगी। और दो एडिशनल टीम बटालियन हेडक्वार्टर द्वारका में, वहाँ पर हमने स्टैंड बाय रखा हुआ है, ताकि अगर रिप्लेसमेंट की और टीम की ज़रूरत होगी तो 6 टीम हमने इसके लिए या मार्क किया हुआ है।
0: NDTV continues to report from the mishap site in Delhi's Satyaniketan. My colleague Reet Kaur Sani has been reporting from Ground Zero. Let's take a look at these reports.
6: Well, I'm currently present in a hostel inside of Satyaniketan. This is just a couple of meters away from where the building collapsed. And you can see that the entire area does not have any width at all, which means that, you know, if one has to enter and exit from this area, there is not much space that they have. The entire area is such that at one point of time, only me or my camera person can walk through these stairs. These stairs are so narrow that tomorrow, God forbid, if such an incident occurs where there is a need for students to escape, they will not be able to do so. Now, what's extremely important to understand is that this lies in an area where many students from different parts of the country come over here to study. Delhi University is one of the most revered universities, one of the most sought after universities of the entire nation, which is why students from all walks of life from across the country and even from across the globe come over here to study. Now, this is one entry and exit that this paying guest accommodation over here in specific has, which means that tomorrow, God forbid, if something happens, people will have to push each other to come out of this area. You can see that this is what the building is looking like. Only one entry and exit point. I was trying to talk to some of the hostelers, some of the girls who are staying over here, but they are now a little bit scared. They've been told that they've been given strict instructions by their warden to not speak to media. Many students have come up to me and said that, you know, the specific hostel that fell down, they asked their friends to not stay in that specific hostel so as to ensure that something like this does not occur.